0: लिए बहुत बहुत मुबारक हो। एनडीटीवी पर आपका स्वागत है जानमोनी।
1: थैंक यू सर।
0: जानमोनी, मेरा पहला सवाल, गोल्ड मेडल लेकर जब घर पहुंची आप असम में, सबसे पहले आपने क्या देखा, क्या हुआ था?
1: सर, मैं जब गोल्ड मेडल लेके असम में आया था, तब हमारा गांव लोग सब मुझे लेने के लिए गया था। थोड़ा ढोल बजरा बजाकर मस्ती की उन लोगों ने।
0: लेकिन आपका घर कहाँ था? आप घर घर बह गया था, आपके पेरेंट्स जो थे, आपके माता पिता जो थे, वो एक टेंट में रह रहे थे।
1: हाँ सर, घर तो अभी भी पानी के नीचे ही है। हम लोग तो अभी भी रास्ते पर टेंट के नीचे है।
0: आपका घर बह गया, अभी आप और आपका परिवार कहाँ रह रहे हैं? अभी भी आप एक टेंट में रह रहे हैं?
1: हाँ सर, अभी भी टेंट पे ही है।
0: और आपका घर कहाँ है, क्या हुआ आपका घर का?
1: घर का अभी तो पूरा बुरा हालत है, अभी वो घर के अंदर पानी घुसा हुआ है।
0: तो आपको कैसे लगा जानमुनी जी, जब आप घर पहुंचे थे और आपका घर पूरा पानी के अंदर था, आपके माता पिता एक टेंट में रह रहे थे, आपको कैसे लगा? आप गोल्ड मेडल लेके आसाम वापस आ रहे थे, आपको कैसे लगा ये सब देख के?
1: बहुत बुरा लगा था, क्योंकि जिस बार भी गया था खेलने के लिए, तब मैं गोल्ड मेडल लेके तो अपने घर में ही जाता था। पर अभी इस बार तो बाढ़ की वजह से हम रास्ते पे ही था, इसलिए थोड़ा सा मतलब दुख की बात है ना ये सर।
0: जब आपने अपना घर और सब कुछ ऐसे पानी के अंदर देखा बाढ़ में, जानमुनी, क्या लगा कि कराटे का सपना भी खत्म हो गया? आपको ऐसे कभी भी लगा जब आप दिल्ली जा रहे थे?
1: हाँ सर, लगा था। तो बाढ़ की वजह से पूरा जो सपना था ना, वो टूट गया था।
0: तो आपका परिवार ने आपको क्या बताया, आपको सपोर्ट किया? बहुत सपोर्ट किया आपको?
1: हाँ सर, बहुत सपोर्ट किया, और आलोक पांडे सर ने भी बहुत सपोर्ट किया।
0: और आपके परिवार ने, जानमुनी जी, हमने पढ़ा कि आपके परिवार ने आपके लिए जो दो भैंस थे वो बेच दी, वो एक छोटा सा फिशरी आपका है आपके घर में, उसको भी रखा ताकि ताकि आपका जो कराटे का सपना था वो पूरा हो जाए। क्या ये सच है, आपके लिए ये सब किया?
1: हाँ सर, हाँ सर, ये सच है।
0: कैसे हुआ ये सब, थोड़ा डिटेल में बताइए, कैसे आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया ऐसे?
1: सर, मुझे मेरे परिवार ने कि मुझे बताया कि तू खेल सकती है, तू आगे बढ़ सकती है। और मुझे ये बताया कि बाढ़ की वजह से अपना सपना रुक नहीं जाना चाहिए। और तभी अलक पांडे सर आया और मुझे बोला कि तू खेल पाएगी, तू दिल्ली जा, मैं टिकट वगैरह और रूम की सारी जो तुम्हें चाहिए वो मैं दिला दूंगी, अच्छा बोला था।
0: जब आप असम वापस आए घर पे, जानमुनी, अपने माता पिता से मिले, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो खुश थे, घर तो पानी के अंदर है लेकिन वो आपको गोल्ड मेडल लेकर आए हुए देख के खुश थे, उन्होंने क्या बोला आपको?
1: हाँ सर, बहुत खुश थी, उन लोगों की आंखों से आंसू निकल गए थे।
0: क्या बोले हो आपको
1: खुशी से? मतलब ये बोला कि इतनी तकलीफ से जाकर तू दिल्ली से नेशनल तक गोल्ड मेडल लेके आए, वही हमारे लिए सुख की बात है, ऐसा बोला था।
0: ये फ्लड्स के बाद भी आप ट्रेनिंग करती रही, जानमुनी जी, इतनी हिम्मत कहाँ से आए आपको? ये जो हो रहा है अभी असम में, ये नेशनल मीडिया में कहीं दिख नहीं रहा, एनडीटीवी पर हम लगातार कवर कर रहे हैं कि असम में बाढ़ कैसे हो रहा है, आपको इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आपने ट्रेन किया, बाढ़ के अंदर में भी ट्रेन किया आपने?
1: हाँ सर, क्योंकि मुझे मेरा परिवार पूरा सपोर्ट करता है ना, इसलिए मुझे साहस मिला कि तो मैं आगे बढ़ सकती हूँ।
0: और जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे, क्या आपको कभी भी लगा कि आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा?
1: हाँ सर, ऐसा तो लगा था बाढ़ की वजह से।
0: जब गोल्ड मेडल जीते आपने, जानमुनी जी, सबसे पहले परिवार में किसको याद किया आपने, किसको फोन किया आपने?

0: मैं अपने भाई को सबसे पहले कल क्या था।
1: और उन्होंने क्या बोला आपको?
0: उसने मुझे बताया कि सच सच में क्या। मैंने बोला हाँ भाई सच, मैंने गोल्ड मेडल जीत लिया, ऐसा बोला था। वो तो खुशी से पागल हो जा रहे थे।
1: तो अब सिचुएशन क्या है आपके गांव में जानमुनी? आपका घर अभी भी पानी के अंदर है? अभी भी आप और आपके परिवार एक टेंट में रह रहे हैं?
0: हाँ सर, अभी भी घर पानी के अंदर ही है। हम अभी भी, हमारा परिवार और गांव के लोग अभी टेंट के नीचे ही रह रहे हैं।
1: तो आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? कब तक आप घर वापस जा पाएंगी?
0: 2 महीने के बाद सर।
1: तो 2 महीने के लिए आप एक टेंट में रहेंगी जानमुनी,
0: हाँ सर,
1: और आपका आपका ट्रेनिंग लगातार चलेगा इसमें भी?
0: हाँ सर, चलेगा चलेगा रास्ते पे ही।
1: आप रास्ते में ट्रेन करेंगी?
0: हाँ सर,
1: आखिरी सवाल जानमुनी,
0: हाँ सर,
1: आपका अगला
0: पूछिए।
1: सपना क्या है? आपने एक नेशनल मेडल जीता है अभी, इंडिया के लिए मेडल है क्या आपका नेक्स्ट गोल? आपका सपना क्या है, फ्यूचर ड्रीम क्या है आपके लिए?
0: सर, मुझे अगली बार इंटरनेशनल में जाकर गोल्ड मेडल लेना है। असम के लिए रिप्रेजेंट करना है सर, इंडिया के लिए रिप्रेजेंट करना है।
1: हम आपको बहुत बधाई देते हैं आपके टैलेंट के लिए जानमुनी जी, आपकी बहादुरी के लिए, और हम आपको आपकी कहानी पूरा इंडिया तक जाएगा अभी हमसे बात करने के लिए, बहुत धन्यवाद। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू
0: थैंक यू
1: अस
0: सर,
1: जानमोनी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: right from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rawat, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगाकर शिकार करते हैं।
2: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
3: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30.
5: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे!

0: students of this country who done it, who ordered the pellet gun. This question is asking for the last 15-16 days in the parliament. Our home minister is running away. He is sitting here and there, sitting here and there, but not coming into the parliament. Two bills is there for him. He didn't come at all. So basically, this is a total failure of a home minister for delivering his duty to the parliament.
1: बिल्कुल राहुल गांधी जी एक भगोड़े साबित हो रहे हैं. रोज माननीय किरण रिजिजू उनको कह रहे हैं कि अमित शाह साहब रिप्लाई देने के लिए तैयार है, लेकिन आप बैठिए तो, आप सुनिए तो. ये जवाब उन्होंने सुनना चाहिए, और झारखंड में जो हो रहा है उसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए. मतलब एक जगह एक रूल और दूसरी जगह अलग कुछ, ये डबल स्टैंडर्ड रहा. तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आत्मपरीक्षण करना चाहिए, और बहुत अपेक्षाएं रखकर सभी क्षेत्र के एमपीज आते हैं, अपने अपने प्रश्न रखने के लिए आते हैं, और बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है. राज्यसभा में ट्रिब्यूनल का बिल हुआ, लेकिन एक भी इंडिया गाड़ी का कोई उपस्थित नहीं था वहां, और चर्चा में भाग भी नहीं लिया.
2: केवल ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है और चंदा चोरी, इससे देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान और धर्म से जुड़े व्यक्तियों की भावना आहत हुई. चंदा चोरी करने वाले लोग, चढ़ावा चोरी करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के छात्रों के ऊपर. वो छात्र एक महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं, निहत्थे हैं, और अपनी जायज मांग को लेकर के बैठे हैं. उन पर गोलियां कैसे चली, गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं, किसके निर्देश और आदेश से गोलियां चली, केवल यही दो मुद्दे हैं जिस पर सदन लगातार सदन में बात रखने से सरकार कतरा रही है.
3: Let me now take you to Jharkhand. A day after the lathi charge, the students in Ranchi were back on the streets, this time choosing silence as their weapon. They staged a silent march with mobile flashlights in hand, a symbolic protest against the police action on the 10th of August. Amid the political showdown, the Jharkhand Assembly was adjourned, signed die a day ahead of schedule. The BJP cornered Chief Minister Hemant Soren, accusing his government of running away from questions. Soren, meanwhile, defended the steps taken by the government, thus far assuring the students that their issues are now being resolved. But the political blame game has now widened. The former Education Minister Dharmendra Pradhan training his guns on Rahul Gandhi, accusing him of double standards over the Jharkhand crackdown. Well, the Kaveri water dispute is heating up once again. The Kaveri Water Regulation Committee has directed Karnataka to release as many as 12,000 kuseks of water a day to Tamil Nadu for 15 days straight. And barely hours later, the Kaveri Water Management Authority backed the order. The release is set to begin from 8 a.m. tomorrow, with Karnataka Chief Minister D.K. Shivkumar saying that his government will protect the farmers' interests while staying within the law. And he's already looking at the legal options, with officials hinting that the state may even move to the Supreme Court. Meanwhile, this isn't the state's first order this season. Back in July, Karnataka was told to release 3,500 kuseks. Meanwhile, D.K. Shivkumar is set to meet ministers and even legal experts today as developments pick pace ahead of the Supreme Court hearing on the dispute, which is meant to take place on the 13th of August.
4: The direction given by the Kaveri Water Management Authority is to reiterate the decision taken in the Regulation Committee. The Regulation Committee has decided to release 12,000 kuseks for a period of 15 days. To be realized at Beligundalu. So that decision is being

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: Hindustan mile, Hindustan se.
3: Desh ka tire, JK tire.
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
6: अरे मेरे राजा।
7: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
8: कुछ इससे भी अनोखा।
7: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
9: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
10: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
11: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
10: पुशअप चैलेंज किया जाए। 28, 29, 30।
12: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आतुर मसाला।
4: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
5: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
6: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
5: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
7: तम्बी कैसे? टाइगर कैसे?

0: electricity bill paid.
1: Really?
0: Your mobile recharge is done.
1: How?
0: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to Rs. 300 every month. Use Bheem app to pay.
1: It's the Mahi way.
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आकर मसाला।
6: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
7: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
8: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
9: पुशअप चैलेंज किया जाए। 28, 29, 30।
10: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: 1947 में हमें आजादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने की आजादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आजादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आजादी या इलाज को जरूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंगे होने की या हर चीज को छूने से पहले सैनिटाइजर यूज करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आजादी या उनसे माफी मांगने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं? नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आजादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आजादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि आजादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आज़ाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं एक बेहतर कल मिला था। हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आजाद थी। जय हिंद।
1: On that note, stepping into a short break, more news and updates on the other side. Stay on with us on the broadcast.

0: लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यह तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
3: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
4: ऑफ सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
5: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
4: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
6: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.
3: It's the Mahi way.
4: Hindustan mile, Hindustan se.
5: Desh ka tire, JK tire.
6: जानते हैं मैं Elite Matrimony क्यों recommend करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है?
9: अरे मेरे राजा।
10: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
11: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
12: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
13: पुशअप चैलेंज किया जाए। 28, 29, 30।
14: लंबी कैसे? टाइगर जैसे।
15: Launch control, 0 to 100.
16: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.

0: asked, who are the dogs with bones in their mouths now?
1: नसीर साहब, नसीरुद्दीन शाह साहब, आपने सीधे इसमें बात की थी नसीर साहब ने कि उसमें फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोग बोल नहीं रहे थे कुछ सालों में सीधे सीधे सीधे उन्होंने एक बात बोली थी कि दोज हू हैव बोन्स इन माउथ दे डोंट स्पीक, जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है तो बोल नहीं पाते। माफ कीजिएगा जरा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस बात जो और कुत्ते हैं जिनको हड्डी है।
0: On that note, we're slipping into a very quick break. We're back in a moment with the latest updates for you.

0: Air India flight I-2379 faces a major twist with the pilot.
1: जब तक लाजवाब न बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है, तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा
2: सबका राजा आकर मसाला।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
7: Launch control 0 to 100.
8: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move.
9: This car makes no sense, yet it makes every sense.
10: What we are sitting inside is a Joby powered air taxi.
8: Your friend said, ye le le. We said, maybe not. Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.
11: R Pure Shahi Paneer Masala. Delicious.

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे?

0: bogus amid possible threats coming his way. Says that he was just following advice of the Secret Service. He does what they ask him to do. And I quote, I just go by the Secret Service. Don't really ask too many questions. I get a lot of threats. And starting with our top story is Prime Minister Modi releasing the autobiography of the former president, Shri Ramnath Kovind, a title Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggle. So there we have Prime Minister Modi there releasing that book of the former president of India, Shri Ramnath Kovind, that has been titled Triumph of the Indian Republic, My Life, My Struggle. So this is happening just before the parliament session that is to resume at 11 o'clock this morning. Let's just listen in to Prime Minister Modi.
1: उनके इस आचरण में दुनिया के सामने भारत के संस्कारों की ऐसी तस्वीर सामने रखी जिस पर हर भारतवासी गर्व करता है. साथियों, गुलामी के सैकड़ों साल में हमारे देश ने आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत कुछ खोया था. हमारे पूर्वजों ने सदियों तक संघर्ष किया. महात्मा गांधी, बाबा साहब अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, ऐसी कितनी ही महान विभूतियों ने भारत के नवनिर्माण का सपना देखा था. एक ऐसा भारत जहां गरीब से गरीब, वंचित से वंचित को शिखर तक पहुंचने का अवसर मिल सके. कोविंद जी जैसे व्यक्तित्वों ने अपने श्रम और काबिलियत से केवल खुद का जीवन ही बदला, इतना नहीं है, उन्होंने सदियों के उन स्वप्नों को, उस विजन को भी साकार करने में अपनी अहम भूमिका निभाई है. और इस दिशा में हम सबके प्रयास अभी भी जारी है. हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे. इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा. यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा. साथियों, ऐसे युवा शक्ति के निर्माण के लिए जो प्रेरणा चाहिए, कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी उसका अहम स्रोत बन सकती है. साथियों, कोविंद जी ने अपने जीवन में मोरारजी भाई देसाई के साथ अनुभवों के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया है. कोविंद जी के भीतर देश सेवा की जो भावना थी, मोरारजी भाई के साथ काम करके उन्होंने जो सीखने को मिला, जो रास्ता मिला, कोविंद जी ने राजनीति और समाज सेवा को अपना मार्ग बनाया. वो अपने कर्तव्यों के लिए समर्पित रहे. सेवा को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाकर काम किया. संसद में उनका कार्यकाल गवाह है. राज्यपाल के रूप में भी उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया. राष्ट्रपति के रूप में भी हमें उनकी यही कर्तव्य निष्ठा दिखाई देती रही. यहां तक कि राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद से सेवा मुक्त होने के बाद भी उन्होंने विश्राम नहीं लिया है. वो अभी भी एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर काम कर रहे हैं, देश को जगा रहे

ये एक ऐसा विषय है जिसका समाधान देश के लोकतंत्र का नया अध्याय शुरू कर सकता है। मैं मानता हूं कोविंद जी की इस कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव से देश के लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथियों, सामाजिक जीवन में सक्रिय रहते हुए ऑटोबायोग्राफी के लिए समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है। कोविंद जी ने ये काम हम सब के लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता, कैसे वही आदर्श आगे चलकर हमारे जीवन का आधार बनते हैं, हमारे कठिन समय के मूल्य किस तरह जीवन भर में हमें रोशनी देते रहते हैं, कैसे इस पवित्रता से हमें राष्ट्र सेवा की शक्ति मिलती है। अलग अलग पदों का दायित्व तो निभाते हुए कोविंद जी ने समाज को निरंतर इसकी प्रेरणा दी है। साथियों, मुझे विश्वास है कोविंद जी की ऑटोबायोग्राफी इसमें उनके जीवन की ही नहीं बल्कि हमारे लोकतंत्र की भी अहम स्मृतियां सुरक्षित होंगी। मैं एक बार फिर उन्हें उनकी आत्मकथा के लिए शुभकामनाएं देता हूं और मैं खासकर के युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा, रील का जमाना है,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से।
5: देश का टायर जेके टायर।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: Now to the national capital. NDA MPs are holding a Tiranga bike rally in Delhi this morning, with the event beginning at Bharat Mandapam. These are the fresh visuals coming in this morning. This rally comes ahead of the Independence Day. Ishika is with us. I'm told she's with Manoj Tiwari at the moment. Let's go across to her. Over to you, Ishika.
11: Well, yes, in fact, Parmeshwar, it is a beautiful visual out here. Manoj Tiwari ji with us. Sir, Tiranga Yatra ki aaj shuruaat ho gayi hai. Kya kahiye?
12: ये भाव है देश के प्रति कर्तव्य का, ये भाव है देश को 2047 तक विकसित बनाने का, ये भाव है नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगे के साथ ओतप्रोत हो जाने का।
11: सर ऑपोजिशन को आज क्या करेगी?
12: ऑपोजिशन तो तिरंगा यात्रा में भी नहीं आता है, सांसद हो के भी।
11: आज आप बुलाए थे?
12: हाँ, उनको बुलाया गया था, सभी सांसदों को बुलाया गया है। ये देश के सरकार का कार्यक्रम है और इसमें हर सांसद हर विधायक, सांसद तो बिल्कुल शामिल होना चाहिए था, लेकिन जिसको तिरंगे से प्यार ही नहीं उसको कैसे आने का मन करेगा।
11: So as you heard here, this was in fact Manoj Tiwari with us, and let me show you the visuals here, Parmeshwar. These are the visuals that we are getting you from the heart of the national capital. The Tiranga Yatra has started. It was flagged off by CP Radhakrishnan, and there are NDA MPs and union ministers who are participating in this Tiranga Yatra. But apart from that, we are also showing you the visuals of the security forces. The officials, the jawans who guard our borders, they are also today participating in this Tiranga Yatra. What a beautiful visual out here. Tiranga mounted on their bikes and in fact chanting Bharat Mata Ki Jai while in fact going from the Bharat Mandapam towards the India Gate, because that is where in fact this Tiranga Yatra will end. So these are the visuals right here that we are showing you. These are the leaders, the political leaders, and apart from that, there are youngsters, there are security forces, there are jawans who are participating here. And this is after the Prime Minister's message of Har Ghar Tiranga and

0: Welcome back. Now, the probe into the Air India flight that plunged 300 feet while flying from Phuket to New Delhi has taken the biggest turn. The pilot in command of the Air India aircraft from Phuket to Delhi, in which several passengers were injured, we're talking about 17 in all, including four crew members, after it suddenly lost control. In fact, it fell 300 feet and failed a second dope test. Sources have confirmed that they have also said the pilot could have been under the use of marijuana. We have Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu, who said that there will be no compromise when it comes to safety. We also have a passenger who spoke exclusively to NDTV's Shivarur. This passenger has found that, while they were getting onto the flight, they found the pilot's behavior very, very off. The passenger has also gone on to question why the pilot did not make an emergency landing in order to ensure those injured could get immediate medical attention. Listen in.
1: Pilot, according to our sources, has tested positive for marijuana. You were on that flight. Your first reaction, sir?
2: Sir, me and my brother were one of the very last passengers who came on the flight with the same pilot. And I had discussion with the pilot. I asked the pilot, is the flight on time? Are we late enough? What is happening? He was very slow. His eyes were red. And at the same moment, I just had a very funny conversation with my brother. He seemed to be high. And what happened after that, you all know.
1: You told your brother he seems to be high, which means you spoke to him while the aircraft was on the ground in Phuket?
2: Yes. We were the last two passengers and one pilot which came on board.
1: But it wasn't serious enough for you to think about getting off the plane. You just went ahead with the flight?
2: Obviously, we were not sure about it. Who knew if he's high or not?
1: So when you heard about this piece of information that NDTV has now reported, what went through your mind that two dope tests have taken place, blood tests have taken place, urine tests have taken place? In both of them, substances have been found. In the latest one, apparently, he's tested positive for marijuana in his blood.
2: Yeah, after the first test, which was failed, I told my brother, I called him, I was like, see, we were on, even on the first interview that we gave, right after the airport, we exited the airport and we were going to the hospital. I was the first person to say in any interview, he seemed to be high. And when we said that, we were made a joke of. Mm-hmm. There were memes on the internet and everything that how do you think he's able to fly? He's a pilot. Do they not have any BA test or anything? But it came to my notice that on the international flights, the BA tests are done post-flight, not pre-flight. No one was believing it until you cleared it out.
1: Can you describe for us what happened? You know, we've spoken to some of the passengers. We have a handful of videos inside the cabin when that incident took place. Can you describe for us in your own words what you saw, what you experienced?
2: So after 2 hours in the flight, when the breakfast was served and everyone was relaxing after the breakfast, me and my brother were seated together. And our eyes was closed. Suddenly we hear a very, very noisy sound. I cannot even explain, when a fighter jet crosses a head, right? Exactly a sound like that. And the next moment I knew my brother hit the roof 3 to 4 times. And everything was flying around. People were bleeding, shouting, crying for help, telling pilot to stop. But the only thing we could see is pilot concern was it was the first time in my life I saw any pilot come out of their cockpit and started giving coaching to the passengers not to record, not to do this. Please, baat ka patangad ban jayega was his clear statement, which I've been recorded on the videos as well. We are having a life and death situation. Who is so worried about getting clicked on a camera or anything like that? I've never seen someone. And his major concern was not to stop the flight and provide everyone medical treatment. His major thing was to land back in Delhi so he didn't have to get any questions around or anything like that. So he did not do any emergency landing anywhere else.
0: Tanushka, my colleague, joining us in order to get us details. Tanushka, isn't this an exposure of the larger failure when it comes to testing pilots? I mean, of course, he was visibly impaired. You know, other passengers on that flight could tell he had bloodshot eyes. What about other crew members? What about other checks in place? I mean, do pilots get to just reach the cockpit without any checks whatsoever?
3: Right, Divya. So what we do know as per the civil aviation requirements of our country and as per DGCA's regulations as well, this is under Rule 5 of the CAR. This does not mandate any test, especially a psychoactive substance test, to happen before the flight. These are random tests that happen and mostly, usually after the flight, post-flight, upon arrival at the destination airport, or during the flight as well, it could happen. In this case, it happened after arrival at the Delhi airport. So, you know, this is as per the guidelines as well. Definitely, this brings about questions with respect to the guidelines as well now, the CAR as well, whether or not this needs amendment, because a pre-flight psychoactive substance test would have possibly prevented this incident altogether. What we also understand from our sources is that the cabin crew of this flight has filed a complaint with the airline against the pilot in command's onboard behavior. And after this happened, you know, after the 300 feet plummet happened, the co-pilot had to single-handedly steady the aircraft and safely at the destination. So what we do know as of now is that the pilot definitely has confirmed with marijuana in the second dope test, but there are technical failures also that come to light. Back to you.
0: Right, absolutely. Exposes the larger systemic failure there in a place that needs to be corrected as well. Thank you so much, Tanushka, for joining us. It's the second last day of the monsoon session that comes to an end tomorrow, but the deadlock in the parliament shows no signs of ending. The government says it's ready for a detailed discussion on the student protests. We have Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju saying that the Home Minister, Amit Shah, is ready to respond in the House, not just on the issue of the 20th of July, as far as the police action is concerned, but on everything related to students' protest. He's further stated that Rahul Gandhi should also respond to what happened in the state of Jharkhand. The opposition, of course, has hit back, saying that it's the Home Minister who's running away from the House. They continue to demand a debate on both the Ram Temple Chanda Chori as well as the alleged police brutality on students here in Delhi at Jantar Mantar on the 20th of last month. And as the monsoon session heads into its final day, the question really is who is running away from that very debate.
4: छात्र आंदोलन का लेकर के जो भी घटना हुई है पूर्ण रूप से डिटेल डिस्कशन के लिए सरकार तैयार है एनडीए पार्टी का पूरा सांसद भी उम्मीद के साथ बैठे थे कि चर्चा शुरू होंगे और गृह मंत्री जी भी चर्चा में जवाब के लिए पूरा तैयारी के साथ बैठे थे लेकिन कांग्रेस पार्टी फिर भाग गई और बाहर में जाकर के नारेबाजी लगाया और चर्चा होने नहीं दिया तो अभी ये हमारा देश के लोगों के सामने में साफ हो गया कि हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं
5: इनजस्टिस हैपेंड अगेंस्ट द स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री हु डन इट हु ऑर्डर द बैलेट गन दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर द लास्ट 15-16 डेज इन द पार्लियामेंट आवर होम मिनिस्टर इज रनिंग अवे ही सिटिंग हियर एंड देयर बट नॉट कमिंग इन टू द पार्लियामेंट टू बिल इज देयर फॉर हिम He didn't come at all. No, basically, this is a total failure of a Home Minister for delivering his duty to the Parliament.
6: बिल्कुल राहुल गांधी जी एक भगोड़े साबित हो रहे हैं रोज माननीय किरण रिजिजू उनको कह रहे हैं कि अमित शाह साहब रिप्लाई देने के लिए तैयार है लेकिन आप बैठिए तो आप सुनिए तो ये जवाब उन्होंने सुनना चाहिए और झारखंड में जो हो रहा है उसका भी जवाब उन्होंने देना चाहिए मतलब एक जगह एक रूल और दूसरी जगह अलग कुछ ये डबल स्टैंडर्ड रहा तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी को आत्मपरीक्षण करना चाहिए और बहुत अपेक्षाएं रखकर सभी क्षेत्र के एमपीज आते हैं अपने अपने प्रश्न रखने के लिए आते हैं और बिल भी बहुत महत्वपूर्ण है राज्यसभा में ट्रिब्यूनल का बिल हुआ लेकिन एक भी इंडिया गाड़ी का कोई उपस्थित नहीं था वहां और चर्चा में भाग भी नहीं लिया
7: केवल ये है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर में जो चढ़ावा हुआ है और चंदा चोरी, इससे देश के करोड़ों करोड़ों आस्थावान और धर्म से जुड़े व्यक्तियों की भावना आहत हुई। चंदा चोरी करने वाले लोग, चढ़ावा चोरी करने वाले लोग कोई दूसरे नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस के छात्रों के ऊपर। वो छात्र एक महीने से जंतर मंतर में बैठे हैं, निहत्थे हैं और अपनी जायज मांग को लेकर के बैठे हैं। उन पर गोलियां कैसे चली, गोलियां चलाने वाले कौन लोग हैं, किसके निर्देश और आदेश से गोलियां चली, केवल यही दो मुद्दे हैं जिस पर सदन लगातार सदन में बात रखने से सरकार कतरा रही है।
0: Switching tracks now, is actor-turned-politician Kangana Ranaut, who has launched a sharp attack on veteran actor Nasiruddin Shah, questioning his silence over the ongoing protests in Jharkhand. Kangana has accused Nasiruddin Shah of speaking up for issues concerning a neighbouring country while staying silent as to the agitation that's taking place here in Jharkhand. Do remember, he'd been very vocal when it came to the Jantar Mantar issue in the national capital. She also hit back at his earlier remarks around actors being dogs with bones in their mouths, calling Shah a fox. Then we also have Piyush Mishra speaking during his visit to Ranchi, questioning the silence of the actor, referring to Nasiruddin Shah's earlier, those who have bones in their mouths, they don't speak. Asking as to which are the other dogs who can't speak is what is now being asked by Piyush Mishra.
8: सीधे इसमें बात की थी नसीर साहब ने कि उसमें फिल्म इंडस्ट्री कुछ लोग बोल नहीं रहे थे, तो सामने सीधे सीधे सीधे उन्होंने एक बात बोली थी कि दोस्त है बोन्स इन माउथ दे डोंट स्पीक, जिन कुत्तों के मुंह में हड्डी है वो बोल नहीं पाते। माफ कीजिएगा, आपके प्रति पूरा सम्मान देते हुए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस बात
0: Let's just get you, in regard to the protest that is taking place in Ranchi, a day after that Lathi charge, the students in Ranchi were back on the streets, this time choosing silence as their weapon. They staged a silent march with mobile flashlights in hand, a symbolic protest against the police action that took place on the 10th of August. Amid the political showdown, the Jharkhand Assembly has been adjourned. And this is, of course, a day ahead of schedule. The BJP cornered the Chief Minister, Hemant Soren, accusing his government of running away from questions. Meanwhile, it's Hemant Soren defending the steps taken by the government so far, assuring that the students and their issues will be resolved. But the political blame game has now only widened, with former Education Minister Dharmendra Pradhan training his guns on Rahul Gandhi, accusing him of double standards over the crackdown in Jharkhand.
9: झारखंड विधानसभा के फ्लोर पे आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के इतने दिनों के आंदोलन के बाद, यानी कि 17 दिनों के आंदोलन के बाद, आज दो बड़े आश्वासन दिए हैं। पहला आश्वासन उनका यह है कि 14वीं जेपीएससी परीक्षा जो है, जिसकी वो मांग कर रहे हैं रद्द करने की, वो कह रहे हैं कि वो रद्द करने को तैयार हैं। दूसरा, उन्होंने कहा है कि TDPL कंपनी जो है, उसने अभी तक जितने भी परीक्षाएँ आयोजित की हैं उस पर वो जाँच कराने को तैयार हैं। लेकिन इनकी जो एक मांग है, CBI इंक्वायरी की मांग है, उस पर सरकार चुप्पी साधे हुए, यानी कि उस पर सरकार ने कुछ नहीं कहा है।
10: जी, उन्होंने अभी CBI पर कुछ नहीं बोली है और हम लोगों का मुख्यमंत्री पहले से तय था कि रिफॉर्म लाना है, CBI जांच करना है और जितने भी TDPL द्वारा कंपनी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया उसको रद्द करना है, जो मेन मुद्दा था कि CBI जांच, लेकिन उन्होंने इसी पे कोई टिप्पणी नहीं किया है। तो सर, CID पे हम लोगों को तो भरोसा है नहीं, क्योंकि 2 साल से हम लोग CID के भरोसे बैठे हुए हैं और अभी तक उस पर कोई टिप्पणी कर नहीं सकते।
9: अगर जब तक CBI जाँच नहीं होती है, तब तक आपका क्या मानना है कि आंदोलन ऐसे ही चलेगा?
11: देखिए, सबसे पहली बात तो कि हम हेमंत सोरेन को धन्यवाद कहेंगे। कारण क्या है कि छात्रों के आंदोलन के दबाव के कारण ही जो हमारे मुख्य मुद्दे थे उनमें से कुछ मुद्दों पे तो सहमति बनी, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी बताना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन आप पहले हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप पहले ये बताइए कि राज्य के जो छात्र हैं वो सीआईडी जैसी एजेंसियों पे भरोसा क्यों करें? आखिर ऐसा आपने क्या स्थापित किया है हमारे राज्य में कि छात्र सीआईडी के ऊपर भरोसा कर ले? अगर हम पूर्व की परीक्षाओं को देखते हैं, उन परीक्षाओं में भी सीआईडी एसआईटी की जाँच हुई और राज्य सरकार की एजेंसियाँ हैं, लेकिन उसका क्या प्रतिफलन मिला छात्रों को? इसके पूर्व जेएसएससी सीजल की परीक्षा में भी गठित हुआ एजेंसी का, उसका क्या परिणाम मिला? इसके पूर्व भी कई कमेटियां गठित हुई।
9: ये सीबीआई जांच की बात आज मुख्यमंत्री नहीं किया उन्होंने स्टेज से, उन्होंने बाकी जो बातें कही हैं विधानसभा के मंच पे, उन्होंने 14वीं जेपीएससी परीक्षा को रद्द करने की बात की, उसके अलावा जांच कराने की बात की, यानी कि वो हर परीक्षा जो टीडीपीएल ने जिस आयोजित किया है उसे जांच कराने की बात की, लेकिन सीबीआई जांच जो कि छात्रों का एक मुख्य मुद्दा है उस पर सरकार ने चुप्पी साध ली है। छात्रों का कहना है, ये कोर कमेटी के मेंबर्स हैं, इनका कहना है कि जब तक वो मांग भी हमारी नहीं मानी जाती है तब तक अनवरत जो है रांची में छात्रों का आंदोलन चलता रहेगा।
12: मुझे लगता है कि जो सरकार ने निर्णय लिए हैं अध्यक्ष महोदय रिफॉर्म्स का रद्द करने को लेकर और जांच को लेकर, बिल्कुल सरकार की मंशा स्पष्ट है और सरकार निरंतर अपने कदम आगे बढ़ा भी रही है। हम आगे कामों को अंजाम तक ना पहुंचा पाए इसके लिए इनका अपना जो विपक्षी ताकत है उसका दुरुपयोग करने में लगे हैं, लेकिन कोई चिंता नहीं और कल जिस तरीके से सरकार और आंदोलनरत छात्रों के बीच में पूरा दिन भर का समय व्यतीत हुआ,
13: आप लोग सदन में व्यवस्था कायम होने नहीं दीजिएगा, सदन की व्यवस्था को कायम करने नहीं दिया
12: रहा और प्रशासन का भी धैर्य का जो परिचय देश में दिया गया वो भी अभूतपूर्व है अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये हमारे जो विपक्ष के लोग जो गेरवा वस्त्र पहन करके ढोंग रख करके दुनिया को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, अब छात्रों का भी चोला पहन करके झारखंड के छात्रों को गुमराह करने में लगे,
14: तो ये लगा कि उन्होंने पूरी तय करके रखे हुए थे कि आज हमको विधानसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर देंगे, और इसलिए जनता के और बच्चों का इस सवाल से सरकार भाग रही है, उस पर वो कार्रवाई नहीं करना चाहती है। भाई कार्रवाई क्या करेंगे, सीआईडी क्या जांच करेंगे? सीआईडी वाले ने तो सब गुड़ गोबड़ कर रखा है, यानी जान बूझ करके आप मामले को दबाए हुए हो, क्योंकि लगता है कि आप बड़े लोगों को बचाने के प्रयास में। ख्यांते का तो रिजिग्नेशन हो गया, लेकिन जेसीसी में जो प्रभारी चेयरमैन कौन है, उन्हीं का आईएएस ऑफिसर सचिव है किसी भी विभाग में, प्रशांत कुमार, उनके कालखंड में ये सारे गड़बड़ियां हुई, वो कब रिजाइन देंगे, कब उनकी गिरफ्तारी होगी, ये हेमंत सोरेन को बताना चाहिए।
0: Switching tracks now to Maharashtra, very tragic news coming in of a landslide that's taken place in Kurla, in which many people are afraid they remain trapped. Two people have died in the Kurla landslide. According to the DCP, 4 to 5 people are still feared to be trapped under the debris. In fact, to know more as to what is really happening here, we have Sujata, my colleague, joining us. Sujata, very, very tragic news coming in. But first,

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम?
2: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26.
3: तैयार हो जाए, पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूं, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे और कल दोपहर 3 बजे तक, हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार है अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज़ लिखूंगा और हर चीज़ का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है।
4: Speaking to the media, stating that the ball is now in the opposition.

0: in Parliament. I will also ask them why the delay in this discussion, given that I am ready to speak on the floor of the House. The first response by Amit Shah there on him being ready to speak in person, and now all eyes on the opposition. There's been ruckus in Parliament. Lok Sabha, Rajya Sabha adjourned till 2 o'clock this afternoon. Just another day of the logjam continuing. But Amit Shah, the Home Minister there, stating that the government is ready to speak on the violence that took place during the student protest on the 20th of July. Amit Shah saying that he is ready to respond to all the questions that the opposition and opposition MPs have for him. But now it's for the opposition to reach out to the Lok Sabha Speaker Om Birla and ensure that they submit a letter ready for the discussion on the floor of the House, after which Amit Shah says that he is ready and the government will be ready to discuss the issue however late into the night and till tomorrow, after which he is ready to respond at 3 p.m. tomorrow, Thursday. Listen in to the Home Minister once again.
1: देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, भगोड़े हैं, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूँ, मेरी चैम्बर में बैठा हूँ। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहाँ तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूँ, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते। अब जनता तय करे कौन भाग रहा है। आज भी मैं कहता हूँ, आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीज़ों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। वो भी चर्चा करूंगा कि आपने क्यों चर्चा नहीं चाही। भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार, एनडीए की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है, संसद वो चलने दे बस। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिखकर दे दीजिए स्पीकर साहब को, 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीज़ों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है, आज 3 बजे से देर रात तक जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूँ, मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: All right, that was the first statement by Home Minister Amit Shah on the demand by opposition MPs for him to speak in Parliament. I have a response now from the Congress. We have Mr. Tagore on the phone line with us. Mr. Tagore, your response to what the Home Minister has just said. He has said that opposition MPs are being escapists. I am ready to talk. Now it's for them to submit a letter to the Lok Sabha Speaker, after which we can have the discussion. Your first response.
2: 15 days of the attack on the students. 15 days after the how the Jantar Mantar Delhi police and those organizations which reports to Mr. Amit Shah, 15 days after the parliament being not functioning, 15 days after the same demand, when they were demanding 3 demands that Mr. Amit Shah should come to parliament, Mr.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा,
4: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
5: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
4: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है?
3: कौन?
2: बच्चे हैं?
3: तीन साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: ना करते अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the network of impact.
0: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% Suji se bani, are pure vermicelli, swadisht, sehatmand, har roz.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News.

0: parliament is the bigger question.
1: देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा? जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं, मगर वो चर्चा ही नहीं होने देना चाहते।
2: मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह इमेजिनेशन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन हिम गिविंग अस अ लेक्चर और अ डिस्कशन, वी आर इंटरेस्टेड इन वन सिंपल थिंग। And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Who gave the order to shoot those students? Who blinded one of the students? Who shot one of the students in the ear? Who gave the order to beat the students with lathis, with nails? Who gave that order? That order was implemented by the Home Ministry. Delhi Police and RAC are both Home Ministry systems. Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not? If he did, he should resign because he is culpable. And if he did not, he should resign because he is incompetent.
3: बताइए, आप क्या सोचते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उन पे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं, हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप?
4: अमित शाह की स्टेटमेंट के, अमित शाह को तो इस्तीफा देना पड़ेगा। स्टेटमेंट की बात छोड़ दीजिए, भविष्य में ये नौबत आने वाली है कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ने वाला है। आप देखिए क्या होता है, इतना आसान नहीं है।
5: गृह मंत्री जी शुरू से यहाँ पे जवाब देने को तैयार है, पर उनकी एक ही शर्त है कि आप धैर्य से पूरी चर्चा सुनोगे और धैर्य से संसद चलने जरूरत हो। ये चलाना नहीं चाहते क्योंकि इनका असली मुद्दा है FCRA बिल। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए, जॉर्ज सोरोस से पैसे लिए, यहाँ तक कि जो देशद्रोही है जाकिर नायक, उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया। तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं, वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं?
6: देखिए, HM आए सदन में, कोई बहुत एहसान नहीं करेंगे, ये उनका संवैधानिक दायित्व तो है कि वो आए सदन में। बुलाने की क्या जरूरत है, जब उनसे संबंधित विभाग पर हो तो उनको रहना चाहिए, ये उनका दायित्व तो है, संवैधानिक कर्तव्य है। वो बताएं कि इन पर जो विभत्स हिंसा हुई है बच्चों के साथ जंतर मंतर, उस पर जवाब दें। चढ़ावा चंदा भगवान राम के मंदिर का जो चोरी हो रहा था, चोरी हो रहा है, निर्माण के दिन से जमीनों का जो घपला हुआ, 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में एक ही दिन में बिक गई, तो इन सारों पे वो जवाब दे।
7: For which the opposition has been demanding, and that too only half-hearted, because we have been asking from the day one that Ram Mandir, that Chadhawa Chori also should be discussed, because that trust was constituted by the Prime Minister himself. They have been demanding, they have been seeking vote in the name of Ram Temple. They have been playing all political game in the name of Ram Temple. They have been grabbing land, they have been grabbing Chanda. And like the students who were on strike, I mean dharna for 20 days, after 20 days the Prime Minister realized that he has to speak.
0: My colleague Himanshu now joins me live. Himanshu, in about 50 minutes from now, we are going to see Lok Sabha and

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
5: बैठ सकता आपके साथ? खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है?
6: और
5: बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
4: See, the sacrifice is unbelievable, you know?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
5: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
4: आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा।
5: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
6: डेढ़ महीने पे।
5: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
6: 3 साल।
5: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
6: बहुत।
5: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
6: श्रीनगर तक अलाउड।
5: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
4: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: only one demand, is that the attack on students in Jantar Mantar, that should be answerable. We wanted Amit Shah to come and apologize, and Mr. Modi to apologize about the children, to the children whom the Delhi police has beaten up, using gundas as police uniforms. They beaten up the kids, girl children. And second very important, third very important demand we are making is Chadda Chori. Ram, in the name of Ram, they had from two seats, they had come to this level. And Prime Minister Mr. Modi has gone to the inauguration of Ram Mandir. There Chori has taken place. Theft has taken place in the temple where Mr. Modi is having the control of the Ram Mandir, Ram temple. He should be first answerable that discussion needed in parliament. Why they are running away from parliament? I am unable to understand.
1: Amit Shah ki statement ke Amit Shah ko to istifa dena padega. Statement ki baat chhod dijiye. Bhavishya mein ye naubat aane wali hai ki Amit Shah ko istifa dena padne wala. Aap dekhiye kya hota hai. Itna aasan nahi hai.
2: मंत्री जी शुरू से यहाँ पे जवाब देने को तैयार हैं, पर उनकी एक ही शर्त है कि आप धैर्य से पूरी चर्चा सुनोगे और धैर्य से संसद चलने जरूरत हो। ये चलाना नहीं चाहते क्योंकि इनका असली मुद्दा है एफसीआरए बिल। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए, जॉर्ज सोरोस से पैसे लिए, यहाँ तक कि जो देशद्रोही है जाकिर नायक उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया। तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं।
3: देखिए एचएम आए सदन में, कोई बहुत एहसान नहीं करेंगे, ये उनका संवैधानिक दायित्व है कि वो आए सदन में। बुलाने की क्या जरूरत है, जब उनसे संबंधित विभाग पर हो तो उनको रहना चाहिए, ये उनका दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है। वो बताएं कि इन पर जो विभत्स हिंसा हुई है बच्चों के साथ जंतर मंतर, उस पर जवाब दें। चढ़ावा चंदा भगवान राम के मंदिर का जो चोरी हो रहा था, चोरी हो रहा है, निर्माण के दिन से जमीनों का जो घपला हुआ, 2 करोड़ की जमीन 17 करोड़ में एक ही दिन में बिक गई, तो इन सारों पे वो जवाब दे।
4: For which the opposition has been demanding, and that too already half hearted, because we have been asking from the day one that Ram Mandir, that Chadhava Chori also should be discussed, because that trust was constituted by the Prime Minister himself. They have been demanding, and they have been seeking vote in the name of Ram Temple. They have been playing all political game in the name of Ram Temple. They have been grabbing land, they have been grabbing Chanda. And like then the students who all were on the strike, I mean, dharna, for 20 days, after 20 days, the Prime Minister realized that the head to speak.
5: Padma Shah, my colleague joining us in order to get us details. Padma Shah, of course, Amit Shah, they're saying he's ready to answer the opposition regarding the excessive use by the police during that protest here in Jantar Mantar. In fact, he's challenging the opposition for that 24-hour debate, saying, I'm going to sit through it all starting 3 p.m. today. I am not going to avoid any question. I'm going to answer it all. Yet, there seems to be no debate at the moment. Talk us through what's really happening here.
6: Well, right now the ball is in the court of the Congress, and all this while they had been demanding a statement from the Home Minister. Now that offer has come of a debate where Amit Shah has said, I have nothing to hide, I am going to answer all questions, you please give notice. They had been given time till 2 p.m. and now Lok Sabha is again sitting. So clearly he has thrown down the gauntlet and put the ball in the Congress's court, saying you want a statement, you want to discuss issues. Everything is on the table. We have nothing to hide and we are going to discuss all the events. Now, politically, it's going to be a bit of a bind as far as the Congress is concerned. So, are they finally going to take up the Home Minister on his offer? Seems unlikely for the time being, because Rahul Gandhi, the leader of opposition, when he spoke a while ago, soon after Amit Shah had made that statement, Rahul Gandhi said, we're not interested in listening to the Home Minister's imagination, his very words. We want his resignation, because either he was ignorant or he was culpable. If he is ignorant and he did not know that a lathi charge or pellet guns were being used in Delhi, then he should resign. And even in the eventuality that he was culpable, he ordered it, even then he should resign. In fact, we've got somebody here who in Jharkhand is engaging continuously with the students who are sitting in protest. And it's a very interesting situation that the Congress finds itself in, because you've got the students also in Jharkhand sitting, they are agitating. Ms. Deepika Pandey, thank you very much for speaking to us. So now the Home Minister is saying कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं लोक सभा में. क्या आपको लगता है कि कांग्रेस को अब चर्चा में आना चाहिए?
7: कांग्रेस को चर्चा की मांग कांग्रेस काफ़ी समय से कर रही थी, लेकिन होम मिनिस्टर क्यों चर्चा पे तैयार नहीं थे ये सबको समझ में आता है. झारखंड के माध्यम से उन्होंने झारखंड के माध्यम से एक माहौल बनाने का प्रयास भाजपा के पक्ष में किया है जिसमें वो सफल नहीं हो पाए. आप जंतर मंतर पर भी रही होंगी और आज झारखंड में भी हैं. पूरा नेशनल मीडिया ये ढूंढते रह गया कि कोई एक ऐसा फुटेज मिले जहाँ कोई मेल पुलिस वाला किसी स्टूडेंट को थप्पड़ मार रहा हो, कहीं कोई पुलिस वाला किसी महिला के पीछे डंडे से दुर्व्यवहार कर रहा हो, या कोई ऐसा मामला जहां बर्बरता से पुलिस वाला लाठी चला रहा है स्टूडेंट्स पर. ये नज़ारा उन्हें झारखंड में नहीं मिला और अब वो थक चुके हैं. वो जानते हैं कि झारखंड में बहुत संवेदनशीलता से और राहुल गांधी जी के जो छात्रों के लिए अप्रोच है उसको लेकर के काम हो रहा है.
6: ये बात तो सच नहीं है दीपिका जी. विद द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, तीनों जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं वो तीनों यहाँ पर फुटेज में भी रजिस्टर्ड है जो 10 अगस्त को अंधेरा करके, और ये बच्चों ने ही बोला है, ये कोई मीडिया ने नहीं बोला है,
7: बच्चों से
6: उन्होंने बोला है इफ आई मे, कि लाइट ऑफ की गई और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ. महिला पुलिस के बिना मेल पुलिसमैन ने लड़कियों को घसीट करके, एक लड़की ने हमारे कैमरे पे बोला है कि मेरे को पैर में और पीठ में मेल पुलिस वाले ने मारा है, थप्पड़ मारा है, हमें घसीटा है.
7: I would like to see those footages. लेकिन आप छात्रों के कई सारे ऐसे फुटेज आपके पास होंगे जहां उन्होंने कहा है कि भाग दौड़ में उनको गिरने पर चोट आई है, और कोई ऐसा मामला एक्सेप्शनल कुछ हुआ है तो ऑन कैमरा मैं आपसे माफी मांगती हूँ. लेकिन आप समझिए, 8-8 बैरिकेड छात्र जब तक शांतिपूर्वक चल रहे थे, किस कोई भी स्टेट ये अलाउ नहीं करता कि आप 8 बैरिकेड पार करें. आंदोलनों को रोकने का प्रयास होता है. 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज. 8 बैरिकेड. विधानसभा घेराव का मतलब ये नहीं होता कि आप विधानसभा के परिसर के अंदर जा कर के अपनी बातों को रखें. एक लॉ एंड ऑर्डर के को मेंटेन करने के हिसाब से आज कोई संसद में घुस जाएगा तो आपको मालूम है ना कि वहाँ गोली, सीधे गोली मारने की, अनऑथराइज्ड कोई घुसता है तो ये करने की बात है.
6: इट्स सो इंटरेस्टिंग यू से दैट बिकॉज दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज बीइंग अटेम्प्टेड ऑन द 20th ऑफ जुलाई वेयर द प्रोटेस्टर्स हैड रीच्ड विद इन 500 मीटर्स. इट इज ऑन कैमरा. दे वर राइट नेक्स्ट टू द पार्लियामेंट बिल्डिंग वॉल एंड व्हिच इज व्हेन द लाठी चार्ज.
7: देन यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन झारखंड एंड जंतर मंतर. वहाँ जब 500 मीटर आप कह रही हैं अगर कि पार्लियामेंट के पास पहुंचे थे तो छात्रों के साथ क्या किया गया?
6: It's on camera,
7: कैसे,
6: it's on camera.
7: कैसे बिना यूनिफॉर्म के लोगों को, गूंज को भीड़ में घुसाया गया था. और यहाँ झारखंड के विधानसभा के गेट तक पहुंचने के बाद भी बच्चों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उन छात्रों के साथ उपद्रवी भी थे. वो आप आंदोलन कर रहे छात्रों से पूछिए, आप जरूर मिली होंगी इस आंदोलन को लीड कर रहे रविंदर पासवान. ऑन कैमरा ही एक्सेप्टेड कि उपद्रवी इस हमारे आंदोलन, शांतिपूर्वक आंदोलन में घुस गए हैं.
6: मिस पांडे, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वाज एक्सेप्टेड बाय अभिजीत दिपके आल्सो, दैट उन्होंने भी कहा कि हमारे आंदोलन में कुछ उपद्रवी घुस गए हैं. जब जंतर मंतर से थोड़ी दूर पर आरएएफ वालों को पीटा गया ऑन द 22nd, नॉट इवन ऑन द 20th.
7: यू विल पुट ऑल एफर्ट्स टू कंपेयर जंतर मंतर एंड झारखंड विद फोल्डेड हैंड्स. आई विल से प्लीज डोंट डू दिस. यहां जंतर मंतर पे जब आंदोलन हुआ, महीने तक चला, उसके बाद एक इस्तीफा लिया गया. स्टेट यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर सीआईडी की जांच पहले शुरू कर दी गई थी, और जब बात आने लगी, खुलने लगी, भाजपा का जो एजुकेशन माफिया है, जो एग्जामिनेशन माफिया है, उस वो घबराहट में उन्होंने छात्रों को आगे करके आंदोलन किया और वो अब एक्सपोज भी हो गए. अब
6: JPSC
7: चेयरमैन हैज बीन अरेस्टेड. पूरा JPSC भंग है. बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हम लोग इसका समाधान देना चाहते हैं. झारखंड वॉज वन स्टेट जो 2023 में विधेयक ला करके स्ट्रिक्ट लॉज बनाने का काम किया, जो केंद्र ने अब किया है. दे हैव जस्ट रेप्लिकेटेड व्हाट हैपेंड, व्हाट वी डिड इन 2023. और अभी जब यहाँ से एक मॉडल रिफॉर्म्स का स्टूडेंट्स के लिए जब निकलेगा तो वही रिफॉर्म्स पूरा देश कॉपी करेगा. थैंक यू वेरी मच.
6: फाइनली, डू यू थिंक दैट देयर शुड बी अ डिस्कशन इन पार्लियामेंट All right. So you heard the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
6: Just few inches away is पीओके।
5: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
7: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
8: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, एनडीटीवी स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th बीसीएस रत्न अवार्ड्स 2025-26। बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल ऑफ द ईयर एनडीटीवी 24/7। बेस्ट न्यूज ऐप ऑफ द ईयर एनडीटीवी। बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
9: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
10: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
9: आप कहाँ से हैं?
10: हरियाणा।
9: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
10: डेढ़ महीने पे।
9: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
10: 3 साल।
9: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
10: बहुत।
9: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
10: श्रीनगर तक अलाउड।
9: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। See, the sacrifice is unbelievable, you know?
7: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

1947 में हमें आजादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने की आजादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आजादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आजादी या इलाज को जरूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंगे होने की या हर चीज को छूने से पहले सैनिटाइजर यूज करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आजादी या उनसे माफी मांगने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आजादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आजादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि आजादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आज़ाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं एक बेहतर कल मिला था। हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आजाद थी। जय हिंद।

0: ये तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
3: Just few inches away is POK.
2: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?
4: The front lines of Kargil. The fury of Operation Sindhu.
5: So many attacks.
4: The chaos and cries of disaster zones. The fighter jet cockpits. And the world's most defining interviews.
5: It's incredible.
4: He has seen history break. Live. Unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
5: Welcome to Left, Right and Center.
4: Hard facts.
5: War-struck country.
4: Hard questions.
5: In the Ukraine.
4: 30 years of trust.
6: In the Kargil area.
5: North Ukraine.
7: In France. In Italy.
5: At Srinagar.
7: I am Iskandar.
5: Vishnu Shom for NDTV.
4: Vishnu Shom. Only on NDTV.
8: प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
9: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन एनडीटीवी स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th BCS रत्न अवार्ड्स 2025-26 बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल ऑफ द ईयर एनडीटीवी 24/7 बेस्ट न्यूज ऐप ऑफ द ईयर एनडीटीवी बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर West Bengal election coverage. Best podcast show of the year, NDTV Control All Defense. Best primetime anchor of the year, Sayed Suhail. Best female anchor of the year, Vasudha Venugopal. Best on-ground coverage of the year, Operation Sindoor coverage. NDTV, the network of impact.
10: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
11: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना अपने।
10: आप कहाँ से हैं?
11: हरियाणा।
10: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
11: डेढ़ महीने पे।
10: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
11: 3 साल।
10: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
11: बहुत।
10: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
11: श्रीनगर तक अलाउड।
10: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है। See, the sacrifice is unbelievable, you know?
12: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर

0: से तत्काल मामले को कानमोदित पाठ सभापटल पर प्रस्तुत करें। बिल माने नागी, बिल हमने आपके पास भेज दिया। इस सदन ने सर्वसम्मति से उस बिल को सभी माननीय दलों के सदस्यों के लिए, उनके नेताओं के लिए, कि उसमें और थ्रेड एंड वेयर डिस्कशन हो जाए, कायदे से उस बिल को जो एविडेंस बुलाना हो, कंप्रेहेंसिव हो, उनका हो जाए। तो मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा, आपको भी धन्यवाद देना चाहिए। आखिर अगर एक बिल कोई पारित हो गया, आप रुक जाए। नहीं, देखिए, ये तो आपकी भावनाएं रखी गई पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस में। औजला साहब, नहीं, व्हाट डू मीन, इफ गवर्नमेंट हैज इटसेल्फ मूव या रेफर टू एनी बिल टू द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, ये आपके लिए स्कोर है, और आप कह रहे हैं इसके लिए नहीं है। आइटम नंबर 30 खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के लिए, माननीय मंत्री जी,
1: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, आई रेज टू मूव दैट द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 टू फर्दर amend the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 be taken into consideration.
0: प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। अब विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। आप सबसे मेरा अनुरोध है, एक मिनट सुन ले जयप्रकाश जी सुन ले, आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने इस पर संशोधन मूव किया है और आप लोगों ने अगर इस पर अमेंडमेंट मूव किया है, तो मैं आग्रह करूंगा, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल द ऑनरेबल मेंबर्स, दो यू हैव मूव अमेंडमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर बिल, काइंडली यू टेक योर सीट, आई विल अलाउ यू। जिन्होंने संशोधन मूव किया है उनके सभी सदस्य अगर अपने अपने स्थान पर चले जाएं, तो मैं अन्यथा फिर मैं सभी खंडों को सभा के लिए निर्णय के लिए एक साथ लूंगा। माननीय सदस्य इनके प्रेमचंद्रन जी, माननीय सदस्य इनके प्रेमचंदन जी, क्या कहना चाहते हैं
2: सर? सर आई एम ऑन ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर।
0: आर यू मूविंग अरुण नेहरू जी, विशाल पाटिल जी, प्रोफेसर सौगत राय जी, श्री अभय कुमार सिन्हा जी, श्री आज आर सच्चिदानंदम जी, श्री बेनी बहनन जी, श्री मनोज कुमार जी, दुरई वाइको जी, इतने माननीय सदस्यों के द्वारा आया है। और तो मैं सभी खंडों को सभा के निर्णय के लिए एक साथ ले लूँगा। प्रश्न ये है कि विधेयक पर विचार किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न यह है कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ है। खंड 2 से 5

0: विधेयक का अंग बना। अब खंड एक अधिनियम और सूत्र और विधेयक का पूरा नाम, प्रश्न ये है कि खंड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य इसके विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। खंड एक अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बना। मंत्री जी अब ये प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए।
1: ऑनरेबल चेयरपर्सन सर, विथ यूर परमिशन आई राइज टू मूव द बिल बी पास्ड।
0: प्रश्न ये है कि विधेयक को पारित किया जाए, जो सदस्य इसके पक्ष में हैं वो हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण मेरी बात सुनिए। माननीय सदस्यगण, अगर ये जो बिल आपके समक्ष अभी मतदान हुआ है, अगर इस बिल पे वाकई आपका विरोध था, इस बिल पे अगर आप इस बिल का पे विरोध करना चाहते थे, तो विरोध का तरीका आपके पास था, आपने अमेंडमेंट मूव किया था, अमेंडमेंट में पूरा आपका अधिकार था बोलने के लिए। बिल जब माननीय मंत्री ने प्रस्तुत किया तो जब विचार हो रहा है तो ये सदन के बेल में, जो सदन के बेल में खड़े हैं, ये शायद अगर आप अपनी सीट पे होते, इससे साफ है कि आप यू डोंट हैव करें ये, यू आर नॉट गोइंग टू अपोज दिस बिल। अगर इफ यू वांट रियली वी आर इंटरेस्टेड टू अपोज द बिल, तो क्यों नहीं आपने पार्टिसिपेट किया? आखिर जब आपका अमेंडमेंट है, माननीय मंत्री प्रस्ताव कर रहे हैं कि इस पर विचार करिए, किसी ने केवल ये शोर करके, आखिर क्या आने वाली पीढ़ियों को क्या मैसेज दे रहे हैं आप? नहीं नहीं जयप्रकाश जी, आप पहले भी एमपी रहे हैं, टैगोर मलकम जी, आप क्या आने वाली पीढ़ियों को आप मैसेज देंगे? यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर चीफ विप ऑफ योर पार्टी। अगर इफ ऑनरेबल मेंबर्स दे हैव मूव अमेंडमेंट और मंत्री जी ने विचार करने के लिए कहा, नहीं श्याम आप यहाँ क्यों खड़े हैं, श्याम यहाँ क्यों खड़े हैं, प्रतिभा यहाँ क्यों खड़ी, ठाकुर प्रतिभा ठाकुर क्यों खड़ी है? तो ये सारे लोग यहाँ खड़े हैं मीना जी, तो मुझे लगता है कि आप कोई आप इसमें नहीं अवसर करें, तो इससे नहीं, पूरा देश इस बात को देख रहा है कि जो भी महत्वपूर्ण बिल है, देश के हित में है, देश की जनता के लिए है, उस पर आप सरकार के द्वारा विचार कर।
2: All right, so there in the chair you could see Jagdambika Pal beseeching the opposition to allow debate and discussion to take place, saying that the bill is being, you know, placed before parliament. However, as you saw, chaotic scenes there and sloganeering as well, with the opposition chanting slogans of Azadi. Remember, there has been a deadlock in parliament over the opposition's demand that Home Minister Amit Shah come and speak in the House and answer who ordered the violence against children, against students who were protesting at Jantar Mantar. That is where the issue really stands. Just one day left of the monsoon session. Let's go back to the Lok Sabha. Listen in.
3: कि नीट एग्जाम को लेकर के छात्रों का आंदोलन जो हुआ, उसका चर्चा अभी शुरू कर दे, अभी शुरू कर सकते हैं, हम लोग तैयार हैं, चर्चा अभी शुरू कर सकते हैं। आप लोग शांति से बैठेगा, आप लोग शांति से बैठेगा, हम लोग अभी इसी वक्त चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी को रुके हुए हैं, कल से रुके हुए चर्चा के लिए, तुरंत शुरू कर सकते हैं।
0: मैं चाहता हूं कि वो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक प्रस्ताव रखा है सदन के सामने कि आपको जो एक चिंता है या नीट की परीक्षाओं को लेकर के चर्चा चाहिए और उस पर गृह मंत्री जी का जवाब चाहिए। तो आज अस्पष्टता आ गया कि ये नहीं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी, सरकार इस बात के लिए तैयार है कि आप इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ कर दें। मैं चेयर से कहना चाहता हूं कि जब सरकार इस पर तैयार

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: ब्रेडस्टिक आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: दिस
0: इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind you,
8: and we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.
1: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground
0: Welcome back. As India gears up to celebrate its 80th Independence Day, Adani Group Chairman Ghani reflected on the turbulent legal chapter the conglomerate has faced in the last 2 years. Days after a U.S. court dismissed the Department of Justice's criminal case against him, Gautam Adani spoke of humility, faith in due process, and the importance of trust built over decades.
2: मैं मात्र 16 वर्ष का था जब मैं पहली बार मुंबई पहुंचा तो मैं सीखना चाहता था काम को समझना चाहता था लोगों को समझना चाहता था आप में से बहुत से साथियों ने भी अपने जीवन में ऐसा ही कोई दिन देखा होगा जब आपने अपने गांव अपने शहर और अपने परिवार को पीछे छोड़कर एक नए भविष्य की तलाश में पहला कदम रखा होगा जीवन का सबसे कठिन कदम अक्सर पहला ही होता है लेकिन वही पहला कदम हमें आकार देने लगता है यह केवल गौतम अदानी की कहानी नहीं है यह हर उस साथी की कहानी है जिसने अपने घर से दूर रहकर देश के किसी कोने में एक प्रोजेक्ट को अपना सपना बनाया यह आप सबकी कहानी है आपके परिश्रम की कहानी है आपके त्याग की कहानी है और आपके विश्वास की कहानी है
0: All right, moving on to some other news and now a campaign report of NDTV's. We often talk about the future as something that belongs to our children, but the future is being shaped by the choices we make today. So what are we really leaving behind for those who come after us? Poet Priya Malik puts that question.

1947 में हमें आजादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने की आजादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आजादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आजादी या इलाज को जरूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंगे होने की या हर चीज को छूने से पहले सैनिटाइजर यूज करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आजादी या उनसे माफी मांगने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छांव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आजादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आजादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आजादी छोड़कर जा रहे हैं। क्योंकि आजादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता, और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आज़ाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं एक बेहतर कल मिला था। हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आजाद थी। जय हिंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बेड सीट आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind you,
8: and we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: appeared erratic. Sources say he was unsteady after landing and had to be helped while giving his urine sample. During the flight, the cabin crew had to help him into the cockpit, with the pilot reportedly found on the cockpit floor when the stall warning went off. Remember, the flight faced major turbulence. The pilot has denied that he was smoking marijuana in the cockpit. Well, moving on to other news now, let's go across to where Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju is speaking.
1: Ye aapne kabhi suna hai? Sarkar khud haath jo karke speaker ko keh rahe hain ki opposition party ko discussion ke liye manwai hai. मैं तो बहुत व्याकुल हो गया हूं डिस्कशन के लिए. हम तुरंत डिस्कशन चाहते हैं. आज भी हमने बार बार ऑपोजिशन पार्टी को कहा कि आप अभी डिस्कशन शुरू कीजिए. होम मिनिस्टर अभी यहां बैठे हैं, अभी डिस्कशन कीजिए. हिम्मत है ही नहीं. तो ये देश के लिए ठीक नहीं है. मैं एज ए पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी बहुत दुखी हूं, लेकिन एज ए एमपी, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं भी तो एमपी हूं, तो दुख होना तो एक नेचुरल सी बात है कि जब पार्लियामेंट नहीं चलेगी तो सबको खराब लगेगा. और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरा मानसून सत्र में जो हंगामा कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी और ये कुछ दल, अब जनता भी जानना चाहते हैं कि आखिर डिस्कशन से कांग्रेस पार्टी क्यों भाग रहे हैं. और डिस्कशन और डिबेट लोकतंत्र का मूल, ये हमारा स्पिरिट होता है. इसी का माध्यम से देश के सामने में डिटेल बात जाता है. तो मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मैं तो बहुत बूढ़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन 30 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और इस 3 दशक का पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस के साथ मैं कह रहा हूं कि ऐसा अपोजिशन पार्टी, ऐसा विपक्ष मैंने अपने जिंदगी में नहीं देखा और कल्पना भी नहीं कर सकता है कि डिस्कशन से भागने वाला ऑपोजिशन पार्टी पार्लियामेंट कैसे चलेगा. फिर पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेगा, पार्लियामेंट मंत्री जवाब नहीं दे सकते, पार्लियामेंट में सरकार अपना बात नहीं रख सकता है, वो सुनना ही नहीं चाहते हैं. मतलब तकिया पकड़ के नाराबाजी करना एक नॉर्मल कर दिया है. अब तो कांग्रेस पार्टी के एमपी सोचते हैं कि उसका काम ही सिर्फ नारा लगाना, तकिया पकड़ना, गाली देना, यही काम रह गया. इसको नॉर्मल बना दिया है. पार्लियामेंट के अंदर में डिबेट डिस्कशन तो भूल गए हैं ये लोग. मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी एक जमाने में बड़े पार्टी थे, लगभग 50 दशक से ज्यादा उन्होंने शासन किया इस देश को, और कांग्रेस पार्टी का ये हाल हो जाएगा कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. क्या हो गया कांग्रेस पार्टी को, डिस्कशन से भागने वाला पार्टी. कौन विश्वास करेगा कि कांग्रेस इतना नीचे डूब जाएगा, ये हालत होगा कांग्रेस पार्टी, सोच भी नहीं सकते हैं. इसलिए कल आखिरी दिन है, हमने तो आज भी अपील किया है. मैं बहुत भारी मन, दुखी मन से कह रहा हूं, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड दैट ऑपोजिशन पार्टी इज रनिंग अवे फ्रॉम द डिबेट्स इन द पार्लियामेंट. Unthinkable, incomprehensible that in parliamentary democracy, opposition party is running away from the debate and government is insisting on full-fledged discussion and also the reply.
2: So what will be the future of
1: limited? वो तो मैं बात बताऊंगा वो विषय को. इंग्लिश में मैंने बोला ना.
3: इंग्लिश
1: में. टुडे एज नॉट ओनली एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, आई एम ऑल्सो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आई एम एक्सट्रीमली पेन, डिस्टर्ब्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड दैट इट इज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दैट द ऑपोजिशन पार्टी इज रनिंग अवे फ्रॉम डिस्कशन इन द पार्लियामेंट. अदरवाइज it is always the opposition which seeks the discussion and the government which tries to defer it. But here the government is too eager to place on record seeking discussion on the floor of the house, and the opposition party is running away. I have never seen such irresponsible opposition party which is not ready to come to the parliament for debate. They are interested only in shouting slogans, use abusive language, carries all those

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind you,
8: and we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Gaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network.

0: उसके साधन नहीं हो पाते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो पाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो सेश लगाए जा रहे हैं वो कल्याणकारी कल्याण के लिए ही लगाए जा रहे हैं, कोई वेलफेयर मेजर्स के लगाया जा रहा है, किसी अन्य चीजों की विलासिता के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं।
1: सब जगह से अभी भी पंजाब हरियाणा, मैंने ये कहा कि उस गैप को भरने के लिए फिर भी हमको 100 रुपये जा रहा है, इसलिए सस्ते मैंने क्या करना चाहिए। तो मेरे दिमाग में एक विचार है, एक्चुअली में जब मैंने पंजाब हरियाणा उत्तराखंड के लिए डीजल और पेट्रोल के रेट देखे तो हमसे वो 100 रुपये जा रहा है, आज खुशी इस बात की है। मैंने कहा भी आज भी क्या करना चाहिए, तो मेरे दिमाग में एक डीजल का विचार आया 60 से 70 रुपये अपने वो उत्तराखंड से कम है, पंजाब से कम है, हरियाणा से कम है, चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है, उसमें किसी प्रकार का आज भी हमारा जो पैसा आ जाता है पेट्रोल और डीजल सब जगह से हमारा 60 से 70 अभी भी 70 पैसे कम है। तो उत्तराखंड से कम ने ये कहा कि पंजाब से कम भर लेते हैं, हरियाणा से भी हम कम रखते हैं, चंडीगढ़ का, क्योंकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है।
2: All right, after the Jantar Mantar agitation, Gen Z has made protests difficult to ignore, and it's now the next generation that is learning from them. In fact, Gen Alpha is now taking to the streets protesting, and they're demanding their basic rights. Students from Uttarakhand to Uttar Pradesh are taking to the streets demanding that they get their basic infrastructure, better roads, better facilities. Take a look at this report.
3: They may be too young to vote, but they're already learning how to make their voices heard. From Uttar Pradesh to Uttarakhand, school children are stepping out of classrooms and into protests, demanding something basic, better facilities and better living conditions. In Uttar Pradesh's Hamirpur, children joined villagers in nearly a 5-kilometer march to the collectorate, holding the tricolor and demanding a proper road.
4: एक मांग लेके आया हूँ कि मेरे बच्चे और आजादी से जब हुआ तब से मेरे रोड नहीं बना मेरे गांव का। हम 5-6 बार आ चुके हैं और बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती
3: है। Villagers claim their road has not been built since independence, and during the monsoon, the problem gets worse.
5: हमें इसमें सारे हमारी यूनिफॉर्म बन दिए जाते हैं, जूता चप्पल सब टूट जाते हैं, फेंक दिए गए हैं पूरे कपड़ा, साइकिल वगैरह पैर टूट जाते हैं कीचड़ के वजह से।
3: For these children, getting to school isn't just about catching the school bus. It's about getting a road that actually reaches their village. And then in Khatima, Uttarakhand, another group of students decided that staying silent was not an option. Students at a residential school staged a sit-in over complaints of poor food quality, contaminated drinking water, Uttarakhand Chief Minister. Two states, two protests. Different problems, but the same message. Making protest culture impossible to ignore. Now the Gen
2: More news on the other side.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind me,
8: and we need to rush into a shelter.
9: Heading there.
10: Will Prime Minister KP Sharma Oli resign?
3: And now, Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.

1947 में हमें आजादी मिली थी। कई लोगों ने अपना आज हमारे कल के नाम कर दिया था। अब 2047 भी दूर नहीं, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कौन

0: सी आज़ादी छोड़कर जा रहे हैं। खुली हवा में सांस लेने की आज़ादी या मास्क से समझौता कर लेने की, साफ पानी पीने की आज़ादी या हर बूंद को परखने की, सेहत को आदत बना लेने की आज़ादी या इलाज को ज़रूरत बना देने की, बच्चों के हाथ मिट्टी से रंगे होने की या हर चीज़ को छूने से पहले सैनिटाइज़र यूज़ करने की, अपने बच्चों को उम्मीद देने की आज़ादी या उनसे माफ़ी मांगने की, आखिर हम कौन सी आज़ादी छोड़कर जा रहे हैं? नदियों को बहते देखने की या सिर्फ किताबों में उनकी तस्वीरें देखने की, पेड़ों की छाँव में बैठने की या एयर प्यूरिफायर के आसपास जीने की, सुबह चिड़ियों की आवाज़ से खुलने की या एम्बुलेंस के सायरनों से, खुले हाथों से लोगों से गले मिलने की आज़ादी या हर लम्हे किसी वायरस से डरते रहने की, अपने बच्चों को सिर्फ जिंदा देखने की आज़ादी या उन्हें सेहतमंद देखने की, आखिर हम कौन सी आज़ादी छोड़कर जा रहे हैं? क्योंकि आज़ादी सिर्फ सरहदों पर नहीं बचाई जाती, वो बचती है घरों में, आदतों में, उस हाथ में जो अपने आप को साफ रखता है ताकि किसी और को प्रोटेक्ट कर सके, उस नल में जो वक्त पर बंद हो जाता है, उस पेड़ में जिसे काटने से पहले कोई एक बार सोच लेता है कि आखिर इसका असर क्या होगा, उस माँ में जो अपने बच्चों को सिर्फ ABCD ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिखाती है, और हर उस बच्चे में जो समझता है कि सेहत सिर्फ मेरी नहीं होती, हवा सिर्फ मेरी नहीं होती, पानी सिर्फ मेरा नहीं होता, और इसीलिए भविष्य भी कभी सिर्फ मेरा नहीं हो सकता, ताकि जब 2047 आए हमारे बच्चे सिर्फ इतना ना कहें कि हमें एक आज़ाद देश मिला था, वो ये भी कहें कि हमें साफ हवा मिली, साफ पानी मिला, सेहत विरासत में मिली और जीने के लिए सिर्फ एक सुंदर देश नहीं एक बेहतर कल मिला था, हमें एक ऐसा देश मिला था जहां सेहत भी आजाद थी। जय हिंद।
1: And on that thoughtful note, it's a wrap from me. Thanks so much for watching. News and updates continue right here on NDTV.

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स
3: 28, 29, 30।
4: तम्बी कैसे? टाइगर कैसे?

0: said, show me one provision that is anti-minority in the FCRA bill. Further, accusing the opposition of spreading falsehoods. Remember, Union Home Minister Amit Shah also met with the minority groups in a bid to end all kind of rumours regarding the FCRA. We'll take a listen to all the reactions coming in on this.
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
2: The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, ours is getting complete donation from the foreign countries. On one side, ours is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this. The government should withdraw this thing. We demand for the withdrawal.
3: वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है तो जेपीसी को पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुलाकर के आप हियरिंग करेंगे वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे ये तो मैं सोचा कि स्वागत करें मैटर बेचता है तो विपक्ष उसका स्वागत करता है
4: ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं सभापति महोदय
5: अगर
4: वो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है माननीय मंत्री जी बताए आओ आप
3: मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान लाया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में
0: So you heard there's so much of opposition against the FCRA bill. So what, but it has been, of course, been passed to the Joint Parliamentary Committee. Let's now tell you what is the FCRA amendment bill. It tightens government oversight. It is managed by the Ministry of Home Affairs. Apart from that, introduced for foreign-funded NGOs here, funds here in India. And the government has timed in said that the FCRA bill has two major aims. Will improve transparency as well. And the NGOs perhaps are seeking to seek government approval prior to receiving funds. And well, to talk more on this, I'm now being joined by my colleague Aishwarya for more on this. Aishwarya, there's a lot of uproar over the FCRA bill so far, but it has now been passed to the

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100 successful matchmaking service for the elite.

0: में जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
1: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
2: पुशअप चैलेंज किया जाए 28, 29, 30।
3: तुम भी कैसे टाइगर जैसे?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones.
4: This location from Tel Aviv
3: brought clarity to complex issues of national security and international affairs.
5: Prime Minister Narendra Modi spoke to him at length yesterday.
6: The Ayatollah Khamenei is gone.
7: There has been a missile attack right behind you.
8: And we need to rush into a shelter.
9: Heading there.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ हैं सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
1: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
2: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
3: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
4: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
3: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
4: आप सिंदूर के समय की जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
5: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
6: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
7: तंबी कैसे? टाइगर जैसे।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
3: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
4: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशंस थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
5: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
6: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
7: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: How?
2: Make all kinds of payments using the Bheem Payments app and get cashback of up to rupees 300 every month. Use Bheem app to pay.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ हैं सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
3: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
4: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
5: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
6: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
7: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड।
3: रियली?
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन।
3: हाउ?
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ। यूज भीम ऐप टू पे।
3: इट्स द माही वे।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस।

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
3: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
4: आप सिंदूर के समय जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
5: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
6: पुशअप चैलेंज किया जाए, 28, 29, 30।
7: तुम भी कैसे? टाइगर जैसे।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज।
4: कायर हम नहीं जो पीठ पीछे वार करें, शेर को भी जगा कर शिकार करते हैं।
5: आप सिंदूर के समय की जो सिचुएशन थी, क्या हुआ था उस टाइम यहाँ पर?
6: हमारे सारे स्ट्राइक्स प्रिसाइज, मेजर्ड और एनिमी के टेररिस्ट कैंप्स पर थे।
7: पुशअप चैलेंज किया जाए? 28, 29, 30।
8: तुम भी कैसे?

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: हम लोग संसद को इस भूख हड़ताल को तभी तोड़ेंगे जब हम लोग सरकार सारी बात मांग पत्र जो दिया गया है वो सारी बातें मान लेंगे तो हम लोग अपना भूख हड़ताल तोड़ देंगे। बट सरकार का तभी तक ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया जो हम लोग को लगा कहाँ सरकार अभी तक हम लोग सारी बातें मान लिया। कुछ कुछ बातें से सर कुछ कुछ बातें सरकार के द्वारा सहमति बनी गई है बट वो कुछ कुछ बातें ऐसे भी जैसे कि बैकलॉग 23/25 और 14/25 से को रद्द किया गया है। बट सिर्फ मैम तो ये ऑलरेडी रद्द हो जाता क्योंकि ये पहले से पेपर लेट के मुद्दा उठ चुका था और वो ऐसे भी जब वो मार्कशीट सारे डिजिटल मीडिया पर और सारे चैनलों पर प्रसारित हो रहा था तो ऐसे भी उसको कैंसिल होना ही था। हम लोग आवाज़ उठाते नहीं उठा तब भी वो क्या बोलते हैं उसको कैंसिल होना ही था। बट सरकार के द्वारा ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि मैंने 3 पेपर कैंसिल किया है तो हो सकता है छात्र अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हम लोग का सारी मांगे नहीं पूरी हो जाती टी डी पी सारे एग्जाम है और अभय जो तिवारी है उसका वो जो एग्जाम में सलेक्ट उसका पाया गया वो सारे एग्जाम तब तक कैंसिल नहीं होगी और CBI जांच का जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कंसर्न जारी रहेगा।
1: ये बताइए रुपेश, अब 9 दिन हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको थका करके कभी तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा ना? कब तक भूखे प्यासे रहो? सरकार थका देगी तो कब तक बैठो?
0: सर हम थकेंगे और मेरी वजह बात आते हैं और लोग बैठेंगे जी। आज सरकार को ऐसा लगता हुआ कि जो अंतर में बैठे हुए हैं वो सब थक जाएंगे हॉस्पिटल चल जाएंगे तो अंतर टूट जाएगा प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, ये उनका भ्रम है। ये आज मैं हॉस्पिटल जाऊंगा या 4 साल से कल सो जाएंगे क्योंकि ये सारे लोग पीड़ित हैं, सारे लोग शोषित हैं।
1: बाहर का जो दुनिया है वो तो सिर्फ सोच रही है कि देवेंद्र नाथ मैं तो वहाँ बैठे हुए हैं और उनको तो अस्पताल शिफ्ट कर दिया, तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि आप अभी भी अनशन
0: जी। बिल्कुल, किसी एक चेहरा को लाइमलाइट बनाना सही नहीं है क्योंकि यहाँ जितने भी छात्र हैं थोड़ा सा वो पॉलिटिकल पार्टी से हो गया था इसलिए उनका ज़्यादा थोड़ा चेहरा चमकता है। बट हम लोग ये जिन्हें छात्र हैं यहाँ पर हम लोग 4 लोग थे और 2 भाई बहन मेरे अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 2 यहाँ पे अभी हैं। बट अगर कल डीसी सर आए हुए थे उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया कि आप अनशन तोड़ दो आप खाना खा लो। बट उनसे मैं साफ साफ बोला कि सर आप जब तक मेरी मांग नहीं पूरी तब तक नहीं खाएंगे। उन्होंने बोला मैं मेडिकल टीम को बुलाऊंगा और आपको हॉस्पिटल भर्ती कर दूंगा। तो बोले सर ये आपकी भ्रम है, अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो हो सकता है यहाँ पे पूरा ये जो मंच खाली है ये मंच भर जाएगा अंतन पे भूख हड़ताल पे।
1: Let me just explain to our viewers what had happened was that initially there was only one stage that was put up on that side of this stadium, and when you had the JLKM, which is a political party in Jharkhand, they came onto that stage with Devendra Nath Mehto. These students who are politically unaffiliated decided to shift away. So these are actual students who are sitting here on a fast unto death, and the country needs to know their name. They need to know the name of Rupesh. They need to know the name of Sabita. If she is continuing to stay here and came here despite her family not even knowing, आप सबके साथ
2: है? बिल्कुल, मैं शुरू दिन से हूँ। मतलब जब हम लोग को पता भी नहीं था कि यहाँ 40 स्टूडेंट का भीड़ लगेगा कि 50 स्टूडेंट का भीड़ लगेगा, तब से मैं हूँ।
1: सबिता ये बताइए कि डर नहीं लगा आप जब रात को लाइट ऑफ कर दी यहाँ पे प्रशासन के लोग आ गए? कब तक यहाँ पे बैठी रहोगी? डर तो नहीं लगता कि क्या पता अगर सरकार ने खाली करा दिया?
3: डर किस बात का? हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? हमारा संविधान में भी तो लिखा हुआ है कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना कहीं भी बैठ के दे सकते हैं। चाहे प्रशासन डराए चाहे कोई भी डराए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, हमारी मांगे जायज है। आप ही किस CID टीम ने इतना सारा खुलासा करके दिखा रहा है कि यहाँ चीटिंग हुआ, यहाँ इतना पैसों का लेन देन हुआ, तो हम लोग क्यों डरे? डरना तो आपको चाहिए, प्रशासन को डरना चाहिए क्योंकि हमारी मांग जो है जायज है। हम क्यों डरेंगे? हमारी तो शांतिपूर्ण धरना दे रहा है। हम
1: लोग एक बार लाठीचार्ज हो चुका है 10 तारीख को,
3: तो ये मैम सरकार का डर दिखा रहा है स्टूडेंटों के प्रति। हमारा डर नहीं है। हम लोग को तो लाठी वही समय मार दिया जाता था जब पेपर लीक कर दिया जाता, पेपर को खुलेआम बेच दिया जाता, पेपर हटवाया जाता, उस समय हम लोग को लाठी मारता था। ये लाठी से हम लोग को डर नहीं लगता। ये अभी 2 लाठी मार दीजिएगा तो हम लोग का हिम्मत टूट जाएगा? हिम्मत कभी नहीं टूटेगा। हमारी मांग है जायज, आप हमारी मांग पूरा कीजिए। हम लोग अभी अनशन तोड़ने के लिए तैयार है।
1: बार बार प्रशासन आ रहा है, रात को भी आए थे जब यहाँ लाइट ऑफ की गई थी, उन्होंने कहा था आपका मान लिया है सब कुछ, हट जाओ यहाँ से, अस्पताल चले जाओ।
3: तो हमारा मांग तो मुख्य मांग CBI जांच के लिए, तो आप क्यों नहीं मांग रहे? आप इतना ही ऑनेस्ट है तो आप हमारे मांगों को पूरा कर दीजिए। डर तो आपको चाहिए, डरना तो आपको चाहिए, हमको डरना नहीं है। हम क्यों डरेंगे?
1: मैं कुछ यू नो
2: मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? वो जिस आवास में रहते हैं वो अपने आसपास सिक्योरिटी रखते हैं, सीसीटीवी कैमरा, बहुत सारे गार्ड्स। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा झारखंड है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आप TDPL जैसे कंपनी को पर छोड़ दिए कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। जो अदर स्टेट में जिसको अमान्य माना गया है उसको, उसके ऊपर आप अपने झारखंड के स्टूडेंट्स का भविष्य सौंप दिए, तो ये सोचने वाली बात है। ये जो बोलते हैं कि हम लोग को नहीं पता है, उल्लू मत बनाइए स्टूडेंट्स को। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जिस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं, उसी तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स मैम जो होते हैं वो तीन पीढ़ी को एक साथ लेकर के चलते हैं, एक तो माता पिता वाली पीढ़ी, एक खुद की पीढ़ी और जो आने वाला जनरेशन होता है वो पीढ़ी। आप सोचिए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स लेकर के चलते हैं और उनके साथ आप इतना अन्याय कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, समझ नहीं आती?
1: दीज आर नेम्स एट द एंड ऑफ द डे दैट पीपल अक्रॉस इंडिया मस्ट रिमेंबर। उम्मे हामी, सबिता कुमारी, रूपेश एंड राहुल क्रांति, रिमेंबर, आउटसाइड ऑफ एनी पॉलिटिक्स, दीज आर एक्चुअल स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हु हैव सैट हियर फॉर ओवर अ वीक विदाउट एनी फूड और वाटर, सो दैट द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस झारखंड शुड बी हर्ड। विद वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी एंड प्रवीण यादव इन रांची, पद्मजा जोशी फॉर NDTV।

0: मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
1: कुछ इससे भी अनोखा
0: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद कमला पसंद पान मसाला।
2: इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड,
3: रियली
2: योर मोबाइल रिचार्ज इज डन,
3: हाउ
2: मेक ऑल काइंड्स ऑफ पेमेंट्स यूजिंग द भीम पेमेंट्स ऐप एंड गेट कैशबैक ऑफ अप टू ₹300 एवरी मंथ, यूज भीम ऐप टू पे,
3: इट्स द माही वे।
4: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
0: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी, आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद, हर रोज़।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन ना बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है, जब तक लाजवाब ना बन जाए उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमन बनना नहीं आसान है।

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज।
2: आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
3: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sahaj, and what's happening? How?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: रिन्यू बदल रहा है इंडिया की क्लीन एनर्जी की कहानी, और इसके साथ है सूरज, हवा और पानी। रिन्यू क्लीन एनर्जी हमसे है।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, on Saturday.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ने वाला, आप देखिए क्या होता है, इतना आसान नहीं है।
1: नहीं, तो यही चीज जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो उनको बोलिए हाउस में आके बोल दे, वो हाउस आ ही नहीं रहे।
2: तो आप भाई क्या लग रहा है
1: भाई, पार्लियामेंट वो तो वही बता सकता है, जो नहीं आ रहा है वही बता पाएगा। मैं तो आ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ पा रहे उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा। लेकिन ये जो इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजोरिटी रहने के बाद जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो, और आप अंदर से घबराए हुए हो, और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है, और उसका जवाब आपके पास नहीं है।
3: मंत्री जी शुरू से यहाँ पे जवाब देने को तैयार है, पर उनकी एक ही शर्त है कि आप धैर्य से पूरी चर्चा सुनोगे और धैर्य से संसद चलने चलोगे। ये चलाना नहीं चाहते क्योंकि इनका असली मुद्दा है FCRA बिल। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए, जॉर्ज सोरेस से पैसे लिए, यहाँ तक कि जो देशद्रोही है जाकिर नायक उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया है। तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं।
4: Well, we're counting down to the last day of the monsoon session, pardon me, 2026, but amid massive ruckus, the Lok Sabha passed a motion this afternoon to send the FCRA bill to a joint parliamentary committee for consideration. The JPC is now expected to present a report on the bill by first week of the winter session. MOS Home Affairs Nityanand Rai introduced the motion in the House, with the Congress, SP and DMK opposing the bill, while Congress's KC Venugopal accused the government of aiming the bill at minority institutions doing good work. Akhilesh Yadav asked the government whether they have brought in any legislation that does not target minorities. DMK's T.R. Balu urged the government to withdraw the bill entirely, then pursue the JPC route. Challenging the opposition, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju intervened and said, show me one provision that is anti-minority in the FCRA bill. And this, of course, comes at a time when Union Home Minister Amit Shah also met various Christian minorities to bust all kind of myths regarding the FCRA bill. Further, Rijiju accused the opposition of spreading falsehoods.
5: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए, और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी, कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें, और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
6: The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, ours is getting complete donation from the foreign countries. On one side, ours is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this.
7: कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: फिर नायक, उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया। तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं।
1: Well, we're counting down to the last day of the monsoon session. Pardon me, 2026, but amid massive ruckus, the Lok Sabha passed a motion this afternoon to send the FCRA bill to a joint parliamentary committee for consideration. The JPC is now expected to present a report on the bill by first week of the winter session. MOS Home Affairs Nityanand Rai introduced the motion in the House, with the Congress, SP and DMK opposing the bill, while Congress's KC Venugopal accused the government of aiming the bill at minority institutions doing good work. Akhilesh Yadav asked the government whether they have brought in any legislation that does not target minorities. DMK's T.R. Balu urged the government to withdraw the bill entirely, then pursue the JPC route. Challenging the opposition, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju intervened and said, "Show me one provision that is anti-minority in the FCRA bill." And this, of course, comes at a time when Union Home Minister Amit Shah also met various Christian minorities to bust all kind of myths regarding the FCRA bill. Further, Rijiju accused the opposition of spreading falsehoods.
2: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
3: The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah Ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, ours is getting complete donation from the foreign countries. On one side, ours is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this.
4: कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा, कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पे इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं। जेपीसी को पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुला करके आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका
5: महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। और सभापति महोदय, सभापति महोदय, अगर आप माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप?
4: मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अखिलेश जी को

0: there was to be a lathi charge, they have nowhere to go. And despite that, they feel that if they are going to desert this place, if they move to hospital, then it will be that much easier for those in power to empty out this entire stadium. Rupesh, tabiyat kaisi hai?
1: ठीक है, थोड़ा सा विकृत लग रहा था।
0: कितने दिनों तक रहेंगे? 9 दिन हो चुके हैं और अभी कोई ब्रेक थ्रू का पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रहा है, तो आगे का प्लान क्या है?
1: सरकार हम लोग जब तक बातें नहीं मानती हैं तब तक हम लोग ऐसे ही रहेंगे। हम लोग समर्थन को इस भूख हड़ताल को तभी तोड़ेंगे जब हम लोग सरकार सारी बात मांग पत्र जो दिया गया है वो सारी बातें मान लेंगे, तो हम लोग अपना भूख हड़ताल तोड़ देंगे। बट सरकार का तभी तक ऐसा कोई कदम उठाया नहीं गया जो हम लोग को लगे कहाँ सरकार अभी तक हम लोग सारी बातें मान लिया। कुछ बातें सरकार के द्वारा सहमति बनी गई है, बट वो कुछ बातें ऐसे भी जैसे कि बैकलॉग 23/25 और 14JPC को रद्द किया गया है। बट सिर्फ मैम तो ये ऑलरेडी रद्द हो जाता क्योंकि ये पहले से पेपर लेट के मुद्दा उठ चुका था और वो ऐसे भी जब ये मार्कशीट सारे डिजिटल मीडिया पर और सारे चैनलों पर प्रसारित हो रहा था तो ऐसे भी इसको कैंसिल होना ही था। हम लोग आवाज़ उठाते हैं नहीं उठा तब भी वो क्या बोलते हैं तो कैंसिल होना ही था। बट सरकार के द्वारा ये प्रलोभन दिया जा रहा है कि मैंने 3 पेपर कैंसिल किया है तो हो सकता है छात्र अपना प्रोटेस्ट खत्म कर दें, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक हम लोग का सारी मांगे नहीं पूरी हो जाती, टी डी पी के सारे एग्जाम है और अभय जो तिवारी है उसका वो जो जन एग्जाम में संलिप्त उसका पाया गया वो सारे एग्जाम तब तक कैंसिल नहीं होगी और CBI जांच का जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक हम लोग कंसर्न जारी रहेगा।
0: ये बताइए रुपेश, अब 9 दिन हो चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपको थका करके कभी तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा ना? कब तक भूखे प्यासे रहो? सरकार थका देगी तो कब तक बैठो?
1: सर हम थकेंगे और मेरी वजह बताते हैं और लोग बैठेंगे जी। आज सरकार को ऐसा लगता हुआ कि जो अनशन में बैठे हुए हैं वो सब थक जाएंगे, हॉस्पिटल चल जाएंगे तो अनशन टूट जाएगा, प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। ये उनका भ्रम है, ये आज मैं हॉस्पिटल जाऊंगा यहाँ 4 साथी कल सो जाएंगे, क्योंकि ये सारे लोग पीड़ित हैं, सारे लोग शोषित हैं।
0: बाहर का जो दुनिया है वो तो सिर्फ सोच रही है कि देवेंद्र नाथ मैं तो वहाँ बैठे हुए हैं और उनको तो अस्पताल शिफ्ट कर दिया, तो लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि आप अभी भी अनशन पर।
1: जी बिल्कुल, किसी एक चेहरा को लाइमलाइट बनाना सही नहीं है क्योंकि यहाँ जितने भी छात्र हैं थोड़ा वो पॉलिटिकल पार्टी से हो गया था इसलिए उनका ज़्यादा थोड़ा चेहरा चमकता है, बट हम लोग जिन्हें छात्र हैं यहाँ पर, हम लोग 4 लोग थे और 2 भाई बहन मेरे अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं और 2 यहाँ पे अभी हैं। बट अगर कल डीसी सर आए हुए थे, उन्होंने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि आप अनशन तोड़ दो, आप खाना खा लो, बट उनसे मैं साफ साफ बोला कि सर आप जब तक मेरी मांग नहीं पूरी तब तक नहीं खाएंगे। उन्होंने बोला मैं मेडिकल टीम को बुलाऊंगा और आपको हॉस्पिटल में भर्ती कर दूंगा। तो बोले सर ये आपकी भ्रम है, अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो हो सकता है यहाँ पे प्राय ये जो मंच खाली है ये मंच भर जाएगा अनशन पे, भूख हड़ताल पे।
0: Let me just explain to our viewers what had happened was that initially there was only one stage that was put up on that side of this stadium, and when you had the JLKM, which is a political party in Jharkhand, they came onto that stage with Devendranath Mehto. These students who are politically unaffiliated decided to shift away. So these are actual students who are sitting here on a fast unto death, and the country needs to know their name. They need to know the name of Rupesh. They need to know the name of Sabita. If she is continuing to stay here and came here despite her family not even knowing, आप सबिता के साथ?
2: बिल्कुल, मैं शुरू दिन से हूँ, मतलब जब हम लोग को पता भी नहीं था कि यहाँ 40 स्टूडेंट का भीड़ लगेगा कि 50 स्टूडेंट का भीड़ लगेगा, तब से मैं हूँ।
0: सबिता ये बताइए कि डर नहीं लगा आप जब रात को लाइट ऑफ कर दी, यहाँ पे प्रशासन के लोग आ गए, कब तक यहाँ पे बैठी रहोगी? डर तो नहीं लगता कि क्या पता अगर सरकार ने खाली करा दिया?
3: डर किस बात का, हम लोग गलत कर रहे हैं क्या? हमारा संविधान में भी तो लिखा हुआ है कि हम लोग शांतिपूर्ण धरना कहीं भी बैठ के दे सकते हैं, चाहे प्रशासन डराए चाहे कोई भी डराए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग जेन्युइन छात्र हैं, हमारी मांगे जायज़ हैं। आप ही के CID टीम ने इतना सारा खुलासा करके दिखा रहा है कि यहाँ चीटिंग हुआ, यहाँ इतना पैसों का लेन देन हुआ, तो हम लोग क्यों डरें? डरना तो आपको चाहिए, प्रशासन को डरना चाहिए, क्योंकि हमारी मांग जो है जायज है, हम क्यों डरेंगे? हमारी तो शांतिपूर्ण धरना दे रहा है हम
0: लोग, कि एक बार लाठीचार्ज हो चुका है 10 तारीख को,
3: तो ये मैम सरकार का डर दिखा रहा है स्टूडेंटों के प्रति, हमारा डर नहीं है। हम लोग को तो लाठी वही समय मार दिया जाता था जब पेपर लीक कर दिया जाता, पेपर को खुलेआम बेच दिया जाता, पेपर रटवाया जाता, उस समय हम लोग को लाठी मारता था। ये लाठी से हम लोग को डर नहीं लगता, ये अभी 2 लाठी मार दीजिएगा तो हम लोग का हिम्मत टूट जाएगा, हिम्मत कभी नहीं टूटेगा। हमारी मांग है जायज, आप हमारी मांग पूरा कीजिए, हम लोग अभी अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं।
0: क्योंकि बार बार प्रशासन आ रहा है, रात को भी आए थे जब यहाँ लाइट ऑफ की गई थी, उन्होंने कहा था आपका मांग ही लिया, मान लिया है सब कुछ,

0: हट जाओ यहाँ से, अस्पताल चले जाओ।
1: हमारा मांग तो मुख्य मांग सीबीआई जांच के लिए, तो आप क्यों नहीं मांग रहे? आप इतना ही ऑनेस्ट है तो आप हमारे मांगों को पूरा कर दीजिए। डर तो आपको चाहिए, डरना तो आपको चाहिए, हमको डरना नहीं है, हम क्यों डरेंगे?
2: मैं ये कहना चाहती हूँ, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन हैं, वो अपनी सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं? वो जिस आवास में रहते हैं वो अपने आसपास सिक्योरिटी रखते हैं, सीसीटीवी कैमरा, बहुत सारे गार्ड्स। तो मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हमारा झारखंड है, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए आप TDPL जैसे कंपनी को पर छोड़ दिए कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए। जो जो अदर स्टेट में जिसको अमान्य माना गया है उसको उसके ऊपर आप अपने झारखंड के स्टूडेंट्स का भविष्य सौंप दिए, तो ये सोचने वाली बात है। ये जो बोलते हैं कि हम लोग को नहीं पता है, उल्लू मत बनाइए स्टूडेंट्स को। आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जिस तरह से प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हैं, उसी तरह से यहाँ के स्टूडेंट्स मैम जो होते हैं वो तीन पीढ़ी को एक साथ लेकर के चलते हैं, एक तो माता पिता वाली पीढ़ी, एक खुद की पीढ़ी और जो आने वाला जनरेशन होता है वो पीढ़ी। आप सोचिए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टूडेंट्स लेकर के चलते हैं और उनके साथ आप इतना अन्याय कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती, समझ नहीं आती?
0: दीज आर नेम्स एट द एंड ऑफ द डे दैट पीपल अक्रॉस इंडिया मस्ट रिमेंबर। उम्मे हामी, सबिता कुमारी, रूपेश एंड राहुल क्रांति, रिमेंबर, आउटसाइड ऑफ एनी पॉलिटिक्स, दीज आर एक्चुअल स्टूडेंट्स, एस्पिरेंट्स हु हैव सैट हियर फॉर ओवर अ वीक विदाउट एनी फूड और वाटर, सो दैट द वॉइस ऑफ द स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस झारखंड शुड बी हर्ड। विद वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी एंड प्रवीण यादव इन रांची, पद्मजा जोशी फॉर NDTV।
3: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
4: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Harisha Sehgal, and Sandy Howard.
3: The show that sets the prime time agenda.
4: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
3: Join me, Harisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: is that the government is ready for an open, extensive and detailed discussion, but alleges that the opposition lacks the courage to participate. He says that the Home Minister has also written to the Lok Sabha Speaker, urging him to persuade the opposition leaders to agree to the discussion, and especially when tomorrow is the last day of the monsoon session 2026. Rijiju calls the situation not good for democracy and not good for the country.
1: We are not interested in listening to Mr. Amit Shah's imagination. We are not interested in him giving us a lecture or a discussion. We are interested in one simple thing. And when I say we, I mean the younger generation of this country. Who shot those students? Did Mr. Amit Shah give this order to shoot our children or did he not?
2: जो ये पत्र जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, गृह मंत्री जी ने मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए, ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जो करके स्पीकर को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाइए।
3: बताइए आप क्या सोचते हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जब हजारों छात्र इकट्ठे होते हैं, उनकी एक मांग है, आप उन पे लाठी बरसाते हो, आप उन पे पैलेट गन चलाते हो, बिहार में उनपे AK-47 चलाते हो, तो आप जवाबदेह नहीं हो जनता के प्रति? तो हम चुप बैठे बस, आप लोगों की तरह, जिस तरह से आप चुप बैठते हैं, हम भी चुप बैठे, ये चाहते हैं आप?
4: डिमांडिंग फ्रॉम जुलाई 20th ओनली वन डिमांड इज दैट द अटैक ऑन स्टूडेंट्स इन जंतर मंतर दैट शुड बी आंसरेबल. We wanted Amit Shah to come and apologize and Mr. Modi to apologize before the children, to the children whom the Delhi police has beaten up using gundas into as police uniforms. They beaten up the kids, girl children. And second very important, third very important demand we are making is Chadda Chori. Ram, and, in the name of Ram, they had from two seats they had come to this level. And Prime Minister Mr. Modi has gone to the inauguration of Ram Mandir. There Chori has taken place. Theft has taken place in the temple where Mr. Modi is having the control of the Ram Mandir, Ram temple. He should be first answerable that discussion needed in parliament. Why they are running away from parliament? I am unable to understand.
5: Amit Shah ki statement ke Amit Shah ko to istifa dena padega. Statement ki baat chhod dijiye. Bhavishya mein ye naubat aane wali hai ki Amit Shah ko istifa dena padne wala. Aap dekhiye. क्या होता है, इतना आसान नहीं है.
6: नहीं तो यही चीज जो आप मेरे से पूछ रहे हैं वो उनको बोलिए हाउस में आके बोल दे, वो हाउस आ ही नहीं रहे.
7: तो आप भाई क्या लग रहा है
6: भाई, पार्लियामेंट वो तो वही बता सकता है, जो नहीं आ रहा है वही बता पाएगा. मैं तो आ रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ पा रहे उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, वो तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा. लेकिन ये जो इतना पार्टी तोड़ने के बाद, इतना मेजोरिटी रहने के बाद जो आप हाउस अवॉइड कर रहे हो या हाउस में नहीं आ रहे हो, ये दर्शाता है कि आप कहीं ना कहीं उन सवाल, विपक्ष के सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हो और आप अंदर से घबराए हुए हो. और आप भी अंदर से जानते हो दिल्ली में जो आपके इंस्ट्रक्शंस पे हुआ है वो कहीं ना कहीं गलत तो है और उसका जवाब आपके पास नहीं है.
8: गृह मंत्री जी शुरू से यहाँ पे जवाब देने को तैयार है, पर उनकी एक ही शर्त है कि आप धैर्य से पूरी चर्चा सुनोगे और धैर्य से संसद चलने चल रहा हो. ये चलाना नहीं चाहते क्योंकि इनका असली मुद्दा है FCRA बिल. राजीव गांधी फाउंडेशन ने चाइना से पैसे लिए, जॉर्ज सोरोस से पैसे लिए, यहाँ तक कि जो देशद्रोही है जाकिर नायक उससे भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया. तो जो जाकिर नायक के टुकड़ों पर जो पल रहे हैं वह इस देश का भला कैसे सोच सकते हैं?
0: Well, we're counting down to the last day of the monsoon session. Pardon me, 2026, but amid massive ruckus, the Lok Sabha passed a motion this afternoon to send the FCRA bill to a joint parliamentary committee for consideration. The JPC is now expected to present a report on the bill by first week of the winter session. MOS Home Affairs Nityanand Rai introduced the motion in the House. with the Congress, SP and DMK opposing the bill, while Congress

0: Congress's K.C. Venugopal accused the government of aiming the bill at minority institutions doing good work. Akhilesh Yadav asked the government whether they have brought in any legislation that does not target minorities. DMK's T.R. Balu urged the government to withdraw the bill entirely, then pursue the JPC route. Challenging the opposition, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju intervened and said, "Show me one provision that is anti-minority in the FCRA bill." And this, of course, comes at a time when Union Home Minister Amit Shah also met various Christian minorities to bust all kind of myths regarding the FCRA bill. Further, Rijiju accused the opposition of spreading falsehoods.
1: मैं माननीय गृह मंत्री जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि विदेशी अभिदाय विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को इस सभा के 21 सदस्यों जो कि माननीय अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाए और राज्यसभा के 10 सदस्यों जो कि माननीय सभापति द्वारा नामित किया जाए से मिलकर बनी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग एक तिहाई होगी कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक इस सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ऐसे परिवर्तनों और उपरांतरणों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष तय करें और कि यह सभा राज्यसभा से सिफारिश करती है कि राज्यसभा उप संयुक्त समिति में शामिल हो और राज्यसभा द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किए जाने वाले सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।
2: The bill is circulated for moving a resolution from the government on FCRA in the name of Honorable Amit Shah Ji. Sir, this legislation is clearly for targeting NGOs and minority institutions, those who are doing good work. One side, ours is getting complete donation from the foreign countries. On one side, ours is getting. On the other side, government is trying to target the minorities and NGOs. The government should withdraw this.
3: कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और बाकी लोगों ने मांग किया है कि जेपीसी में भेजा जाए। ये तो कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के लोगों ने भी कहा। कुछ प्रमुख बिल्स को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी या सेलेक्ट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी में रेफर किया जाए। जब आप महत्वपूर्ण बिल को रेफर कर रहे हैं तो इसका आपत्ति है। अगर किसी वेणुगोपाल जी या किसी पार्टी के मेंबर को इस बिल में आपत्तिजनक कोई चीज है या किसी वहां बिंदु पर इसका विरोध है तो जेपीसी में आप अपना मत रख सकते हैं। जेपीसी को पर्याप्त समय मिलेगा और भी लोगों को बुलाकर आप हियरिंग करेंगे। वो तो खुश होने के चक्कर में उल्टा ये तो उल्टा बोल रहे। ये तो मैं सोचा कि स्वागत करेंगे। जब जेपीसी भेजते हैं, जेपीसी में कोई मैटर भेजता है तो विपक्ष उसका
4: महोदय, जो सरकार एफसीआरए ला रही है इसके खिलाफ में हम पूरे विपक्षी लोग हैं। और सभापति महोदय, सभापति महोदय, अगर आप माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, नहीं माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि माइनॉरिटी के खिलाफ नहीं है। माननीय मंत्री जी बताएं, आज तक जो बिल लाए हैं बिना माइनॉरिटी के खिलाफ कौन सा बिल लेकर के आए हो आप?
3: अखिलेश जी को मैं चुनौती देता हूं, इस एफसीआरए बिल का जो प्रावधान आया है इसमें एक भी प्रावधान ऐसा है आप दिखाइए जो कोई भी माइनॉरिटी का खिलाफ है। ये सर सरासर झूठ बात फैलाया जा रहा है देश में।
0: In other news, the health officials in Bengaluru have raided several eateries and cloud kitchens as a part of their food safety drive. According to the details accessed by NDTV, after raids on five-star hotels, premium restaurants, Zepto and Zomato's hyper-pure facility, health officials have now inspected Indira canteens across Bengaluru. checking hygiene, food

0: मिस हस्टर के उस दौर से जब निर्वाचन प्रदेश गुजर रहा था और गुजरा है और प्रधानमंत्री जी वहां वायदे करके आए, लेकिन जिस प्रकार जो सेंट्रल असिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं मिला, सरकार के पास ऐसी कोई राजस्व के साधन नहीं हो पाते हैं, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं हो पाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो शेष लगाए जा रहे हैं वो कल्याणकारी कल्याण के लिए ही लगाए जा रहे हैं, कोई वेलफेयर मेजर्स के लगाए जा रहे हैं, किसी अन्य चीजों की विलासिता के लिए नहीं लगाए जा रहे हैं।
1: On that note, we're slipping into a very short break. Come right back, lots more lined up.
2: Launch control, 0 to 100.
3: This isn't just about cars and bikes. This is about how you move. This car makes no sense, yet it makes every sense. What we are sitting inside is a Joby-powered air taxi. Your friend said, "Ye le le." We said, "Maybe not." Hi, my name is Siddharth Sharma. I'm your NDTV Automate, your ultimate guide into the world of automobiles and mobility.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal, and Sandy.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: वेट सेट आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आपने ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's that to be? How to be?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's that to be.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to watching Prime 5 with Aisha Sehgal.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal.
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's at stake.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
4: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories that shape your life.
5: Hello and welcome to Watching Prime 5 with me, Aisha Sehgal. What's happening? How?
4: The show that sets the prime time agenda.
5: We'll be deep diving into this topic to tell you what's happening.
4: Join me, Raisha Sehgal, on Prime 5, only on NDTV 24/7.